0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग

0: द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन.
1: आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे. आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा. एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी.
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

साफ और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों का अपना महत्व है। उनमें से एक त्योहार है होली का त्योहार। होली हमारे जिंदगी में अनेक रंग लेकर आती है। बड़े छोटे सभी बड़े खुशी से होली का त्योहार मनाते हैं। होली के पहले दिन होलिका दहन भी किया जाता है। परमात्मा कहते हैं ये होलिका दहन हमारे अंदर के दुश्मनी, नफरत, विकार आदि संस्कारों के दहन का प्रतीक है। जिस प्रकार होली में हम अपने अपने मतभेद भूलकर सभी को रंग लगाते हैं, उसके पहले दिन होलिका दहन करके हम अपने अंदर की नफरत को, नाराजगी को, अपने अंदर के हर एक कमी कमजोरियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे दिन सभी को अपने समान समझ खुशी से रंग लगाते हैं। होली के दिन ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा, न कोई अपना है न कोई दुश्मन है, सभी होली के रंग में रंग जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जब अपने अंदर की नाराजगी को, नफरत को, दुश्मनी को भुलाकर सच्चे रूप में होली मनाएंगे तभी वास्तव में हम होली हंस बन जाएंगे। होली भी होली हंस बनने का ही प्रतीक है। परमात्मा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे होली हंस बनो। जैसे हंस मोती चुगता है कंकड़ नहीं, ऐसे हमें हंस बुद्धि बनना है। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर रत्न धारण करने वाले।

आत्मा कहते हैं पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले बनो। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले नहीं बनो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना है। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना जिसको भाव स्वभाव कहते हैं, जो व्यर्थ है उनको बदलना है। परमात्मा कहते हैं अपनी वृत्ति को हंस वृत्ति बना लो। हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनकी अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। अर्थात कोई कैसे भी वृत्ति से आपके पास आए, लेकिन आपके मन में उसके प्रति कल्याण की ही भावना हो, आप अपनी भावना से उसके मन के भाव को भी बदल दो, ये है हंस वृत्ति। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं कि अपनी दृष्टि को होली हंस दृष्टि बना लो। होली हंस दृष्टि अर्थात सदा हर मनुष्य आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण कर लो। परमात्मा कहते हैं कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसके कर्म कैसे भी हो, लेकिन कभी भी उस आत्मा के प्रति हमारे मन में नफरत घृणा ना हो। हम उसे नफरत की दृष्टि से घृणा की दृष्टि से ना देखें, बल्कि उसे शक्तिहीन कमजोर अपने संस्कारों के परवश निर्बल आत्मा समझकर उस पर रहम करें, उसे आत्मिक दृष्टि से स्नेह की दृष्टि से ही देखें। इसे ही कहते हैं होली हंस दृष्टि। परमात्मा कहते हैं अपने आप को हंस मुख स्थिति में स्थित कर लो, अर्थात अपने मुख से कभी भी किसी भी मनुष्य आत्मा के प्रति व्यर्थ बोल या नकारात्मक बोल ना निकले। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी का दिल दुखाया जाए या किसी भी आत्मा को दुख का अनुभव हो। हमारे मुख से ऐसे कोई भी बोल ना निकले जिससे किसी को दर्द हो। परमात्मा कहते हैं हमारा हर एक बोल दूसरों को सुख देने वाला हो। इसी को कहते हैं हंस मुख स्थिति। परमात्मा कहते हैं कि जब हम होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख ये सब जब होली हंस की तरह पवित्र बन जाते हैं श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देने लगता है। परमात्मा कहते हैं कि साधारणता को छोड़ हमें होली हंस की तरह श्रेष्ठता को ही चुनना है। परमात्मा कहते हैं होली हंस बुद्धि बनाने के लिए परखने की शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं तभी ही ज्यादा व्यर्थ समय जाता है, और व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ सही सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही सही है, इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति समय की शक्ति वाणी की शक्ति सभी चली जाती है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पहले क्या सही है क्या गलत है इसे परखना सीखो, तभी ही होली हंस बुद्धि बन पाओगे।

प्राप्त करना है। परमात्मा कहते हैं, जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो, स्वपरिवर्तन करने की कोशिश करते हो, तब आपका प्रभाव औरों पर भी पड़ेगा और वो भी खुद को बदलने की कोशिश जरूर करेंगे। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने के लिए प्रयत्न करना है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्लस 107.8 एफएम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली मनुष्य आत्मा। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल के और स्वच्छता स्वरूप होंगे। परमात्मा कहते हैं तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ रहे। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो साफ हो लेकिन मन से साफ न हो स्वच्छ न हो तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर ही परमात्मा राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात पवित्रता है। परमात्मा कहते हैं जो तन मन संबंध से पवित्र है वही वास्तव में होली हंस है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस मूर्ति से इस शरीर को स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखना है। परमात्मा कहते हैं कि तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। परमात्मा कहते हैं देहभान में स्वच्छता नहीं होती लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छता पवित्रता की खुशबू आती है। परमात्मा कहते हैं तन के साथ साथ मन को भी स्वच्छ और पवित्र रखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको भी संपूर्ण स्वच्छता पवित्रता नहीं कहेंगे। मन को पवित्र बनाने के लिए परमात्मा हमें मंत्र देते हैं मन मना भव अर्थात अपने मन को एक परमात्मा में लगाना। इसी से ही हमारा मन पवित्र बनेगा। परमात्मा कहते हैं और अगर किसी तरफ भी मन भटकता

है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता है, इसे पवित्रता नहीं कहेंगे। परमात्मा हमें दिल की स्वच्छता रखना भी सिखाते हैं। दिल की स्वच्छता अर्थात सभी के प्रति कल्याण की भावना हो। जब हम औरों के कल्याण की भावना से उन्हें परमात्मा का परिचय देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इसी को दिल की स्वच्छता कहा जाता है। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। सेवा में भी सच्चाई सफाई हो। हमारे दिल में औरों के कल्याण की ही भावना हो। परमात्मा कहते हैं कि संबंध में भी स्वच्छता पवित्रता हो। हमें स्वयं से भी संतुष्ट रहना है और औरों से भी। अगर हम खुद से नाराज रहेंगे या औरों से भी नाराज रहेंगे तो ये भी स्वच्छता नहीं है, ये भी संबंधों में पवित्रता नहीं है। नाराजगी अस्वच्छता का प्रतीक है और संतुष्टता स्वच्छता का पवित्रता का प्रतीक है। परमात्मा कहते हैं खुद से भी संतुष्ट रहो और औरों से भी संतुष्ट रहो। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है,

0: हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है. ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है. अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग. वो पैटर्न्स बन जाते हैं. अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं.
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो खुशियां बांटो.
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है. जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है फिर निर्णय करता है, उसके बाद ही मोती ग्रहण करता है और कंकड़ पत्थर छोड़ देता है. तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया गया है. परमात्मा कहते हैं परमात्मा ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है. परमात्मा कहते हैं पवित्रता को धारण करने के लिए पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती. तो होली हंस में सबसे पहली विशेषता है परखना अर्थात पहचानना. परमात्मा कहते हैं आपको भी हर मनुष्य आत्मा को परखना है और उसके अंदर की विशेषताओं को धारण करना है. कमी कमजोरी रूपी कंकड़ को छोड़ देना है अर्थात हमारा ध्यान हर मनुष्य आत्मा के विशेषताओं पर हो, ना कि कमी कमजोरियों पर. परमात्मा कहते हैं जब विशेषताओं को परख लोगे तभी तो अपने अंदर धारण कर पाओगे और वही वास्तविक अर्थ में होली हंस बनना है. परमात्मा कहते हैं परखने की शक्ति यथार्थ होगी, श्रेष्ठ होगी तो निर्णय भी यथार्थ होगा. परमात्मा कहते हैं अपने मन में उठने वाले हर संकल्प को भी परखना है कि ये संकल्प सही है या रॉन्ग है. जो समर्थ संकल्प होंगे वो आत्मा की शक्ति बढ़ाएंगे और जो निगेटिव व्यर्थ संकल्प होंगे वो हमें शक्तिहीन बनाएंगे. परमात्मा कहते हैं सबसे पहले अपने संकल्पों को परखना सीखो. परमात्मा कहते हैं जो समर्थ संकल्प होंगे उन्हें अपने जीवन में धारण करो अर्थात अपने कर्मों में लाओ, और जो व्यर्थ निगेटिव संकल्प होंगे उन्हें रिजेक्ट करना सीखो अर्थात उन्हें ज्यादा महत्व ना देते हुए उन्हें नकारना है. परमात्मा कहते हैं एक सुंदर बगीचे का निर्माण करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और उसी जगह जंगल का निर्माण करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो अपने आप उगाते हैं. परमात्मा कहते हैं इसी प्रकार मन में श्रेष्ठ संकल्प

संकल्प चलाने पड़ते हैं, उनका निर्माण करना पड़ता है। साधारण और व्यर्थ संकल्पों के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हमें अपने व्यक्तिमत्व का निर्माण करना है तो हमें रचयिता बनना होगा और श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करना होगा। परमात्मा हमें होली हंस बनने की शिक्षाएं देते हैं। श्रुति हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लागरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की। जी हाँ, जहां सेंसेक्स के इंडेक्स को देखते हैं तो वो ऊपर नीचे होता है। तो जब हमने अपने आप को देखा और हमने पिछली कड़ी में आपसे कहा था कि एक मिनट का पॉज जरूर लें, एक सेकंड का पॉज जरूर लें और देखें कि दिन भर में आपकी खुशी कहां तक जाती है, तो यो यो करती इस हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, यही हमारा प्रयास है इस पूरी श्रृंखला में। और हमारा सौभाग्य कि आज भी हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। टुडे इट्स परफेक्टली फाइन अभी तक तो, लेकिन अगेन यू नो लाइक हम इतने अनप्रडिक्टेबल हो चुके हैं कि हमें नहीं पता
1: कब क्रैश करेगा,
0: और कब कोई। अब अगर पिछली कड़ी को देखते हैं तो हमने ये समझा था, देखा था ये बात कि जैसे ही किसी अपने को जिसकी खुशी पर मेरी खुशी निर्भर कर रही थी, उनका इंडेक्स खराब हुआ तो मेरा इंडेक्स भी खराब हो रहा था। वो एक्चुअली हम अल्टीमेटली इस पर भी आना चाहेंगे शिवानी की कैसे ये सब अनअफेक्टेड में रह पाऊंगी।
1: एक्चुअली जो पिछली बार हमने बात किया, आई वॉज जस्ट थिंकिंग राइट नाउ व्हाइल यू वर टॉकिंग, वो एक कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल फेलियर भी बनता है।
0: हाँ,
1: यू नो सपोज आई वॉज जस्ट पुटिंग इट ऑन माई सेल्फ एंड आई थॉट कि अगर मैं आज सारा दिन मेहनत करूं आपके लिए कुछ करने के लिए कि आपको खुश करूं और फिर आप नहीं खुश हो, तो देन दैट बिकम्स माई पर्सनल फेलियर कि मैं नहीं खुश कर पाई आपको। तो दो मेरे ऊपर वो आ जाते हैं, एक कि आप खुश नहीं हुए और दूसरा मैं केपेबल नहीं थी,
0: मैं फेल हो गई।
1: तो वो पर्सनल फेलियर भी कहीं ना कहीं मुझे दर्द में ले जाता है और आप खुश नहीं हुए वो भी मुझे दर्द में ले जाता है,
0: तो मेरी खुशी बिल्कुल ही कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। वंडरफुल। सो अगर दो तरह का दबाव पड़ेगा तो मेरा सेंसेक्स डेफिनेटली डाउन जाएगा, तो उन दबावों से कैसे अपने आप को ध्यान रखना है वाली बात है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर मैं खुशी के बारे में सोच रही थी शिवानी, तो ना सिर्फ लोगों के साथ, मेरे पास बहुत सारी और चीजें खुशी देती हैं। When I buy a new dress, you know,
1: you're wearing a new sari today.
0: Yes. People have been talking about my sari. Actually, if I look at it, yeah. लेकिन जिस वक्त मैं नई साड़ी कुछ ऐसी खरीदूं, या मैं एक नई गाड़ी खरीदूं जो मैं खरीदना चाह रही हूं कब से, या फिर अगर मैं घर की बात करती हूं कि इवन बेडशीट्स या इवन पिलो कवर्स, यू नो कई बार, या फर्नीचर सुंदर सा कुछ खरीदते हैं जो डिजाइनर है, जो बहुत इट डेफिनेटली गिव्स me happiness.
1: So let's keep buying every day new things.
0: No, but we can't.
1: We can't do that. सही बात है. It is true. एक तो दो लेवल पर हुआ कि एक तो हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी को साधनों में जरूर ढूंढते हैं। एक्चुअली तो अगर हम अपनी

0: ये दौड़ को देखें, ये जो जर्नी पर हम भागते जा रहे हैं और ये जो इकट्ठा करने का हमें वो चढ़ गया है, दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन, समटाइम्स एन एडिक्शन, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी आ जाए, फिर हमारी टू डू लिस्ट में वो सारे ऑब्जेक्ट्स ही आते जाते हैं, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना. समवेयर आई एम ट्राइंग टू बाय हैप्पीनेस.
1: अच्छा, इनफैक्ट एक और बात है, आई यू नो व्हेन यू सेड इट्स आई जस्ट क्लिक्ड कि मैंने कोई चीज देखी, सपोज मैंने शोरूम में देखी, सपोज मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट में गाड़ी देखी, कोई मोबाइल फोन नया देखा, कोई ड्रेस देखी, इट स्टेज विथ मी. Till the time I buy it, it stays, you know.
0: Yes.
1: And the thought keeps on coming, I have to buy that.
0: Because जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ अटैच हुई. यू नो, अगर आप अटैचमेंट के बहुत सिंपल लेवल पर देखो, आप मार्केट में जा रहे हो एंड अगर आप एक विंडो को क्रॉस करते हो, एक पर्टिकुलर वहां पे ड्रेस है या गाड़ी है, वट एवर, आपने क्रॉस कर लिया उसको, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी इफ इट इज देयर ऑन योर माइंड, यू आर अटैच्ड. चली गई है, ऑब्जेक्ट चली गई है, बट इट्स स्टिल ऑन माय माइंड. एनीथिंग व्हिच इज ऑन माय माइंड व्हेन इट इज नॉट देयर
1: इज अटैच्ड,
0: माय अटैचमेंट, पीपल ऑन माय माइंड.
1: एक्टर पिक्चर देखने के बाद भी वो हीरो कंटिन्यूस रहता है आपके दिमाग.
0: मेरा माइंड फिर प्रेजेंट में ना होकर
1: हमेशा,
0: इट इज लिविंग विद दोज पीपल या वो ऑब्जेक्ट्स या वो सिचुएशंस. तो ये कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी उनके साथ जुड़ती जाती है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, अगर मैंने ये खरीद लिया तो आई विल फील गुड. तो एक तो हमें ऑब्जेक्ट्स को एक बहुत पहले तो बेसिक लेवल पर अगर हम लें कि हम उनको बोलते ही हैं सुख सुविधाओं के साधन, यू नो, सुख भी सुविधा भी. तो सुविधा डेफिनेटली कम्फर्ट, बट समवेयर कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस को हमने मिक्स कर दिया और सारा प्रोसेस चलता रहा, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये आएगा तो खुशी आएगी.
1: लेकिन इफ आई एम कम्फर्टेबल, आई एम हैप्पी.
0: कम्फर्टेबल फिजिकली,
1: नो अदरवाइज,
0: लेट्स लुक एट इट. फाइन, अगर मैं लेट्स लुक एट इट, डज दिस लॉ वर्क फॉर मी, कि अगर मैं फिजिकली कम्फर्टेबल हूँ देयर फोर मैं खुश हूँ, विल दैट ऑलवेज बी एप्लीकेबल?
1: I feel that.
0: अच्छा, आज आपके लिए मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है?
1: It feels good, yes.
0: It feels good. और फिर आप उस गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी इज कम्फर्टेबल, वेरी गाड़ी, विच एवर गाड़ी वी हैव, इट्स कम्फर्टेबल. हम पहले 4 लाख की गाड़ी खरीदी, खरीदते खरीदते खरीदते हम 40 लाख की गाड़ी तक पहुंच गए. ऑफकोर्स फीचर्स
1: बढ़ते,
0: कम्फर्ट्स वो बढ़ते गए, हैप्पीनेस भी उतनी बढ़ती गई, प्रोपोर्शन फ्रॉम 4 लाख टू 40 लाख.
1: No, when I am sitting there, see, I'll tell you.
0: Huh.
1: When I'm sitting there and I'm playing with the gadgets, see, when I was in London, we did that. Yeah. There were like so many gadgets in the car. I enjoyed them, you know.
0: Yeah. Wo happiness. Stimulant.
1: Yes.
0: स्टिमुलेंट है, एक नवीनता है, एक कुछ एक्साइटिंग है, वो मैं कर रही हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. कितनी देर?
1: हाँ, उतनी देर तक
0: है ना. अब उतनी ही देर में वो कम्फर्टेबल गाड़ी, कम्फर्ट, वो गाड़ी कम्फर्टेबल है और वो हमेशा कम्फर्टेबल रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना. लेकिन क्या वो गाड़ी हमेशा खुशी देगी इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हैपन्स इन द वर्ल्ड?
1: नहीं.
0: दिस इज वॉट वी हैव टू से, कि वो ऑब्जेक्ट किस क्या चीज देने के लिए बना है.
1: वो कम्फर्ट दे रही है, वो बहुत अच्छा स्मूथ ड्राइव कर रही है, वो सब
0: उसका एसी बहुत अच्छा है, उसका एसी बहुत अच्छा है, उसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका सब कुछ बहुत अच्छा है. ये चीजें मेरे शरीर को, मेरे कानों को, मेरे कम्फर्ट को, मेरे बैठने के पोस्चर को, मेरी बैक को, ये सब चीजों को बहुत कम्फर्टेबल है. आज कम्फर्टेबल है, कल होगा और हमेशा रहेगा. उसका कम्फर्ट देने का जो इंडेक्स है वो वेरी नहीं करने वाला है. लेकिन डिड द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कार से कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी इस कार के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा? नहीं. आपका कम्फर्ट लेवल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. जो फीचर उसने आपको सेल किया उस कार ने, उसने आपको कहा कि जब भी आप इस कार में बैठेंगे आपकी बैक का पोस्चर ठीक रहेगा, तो हमेशा रहेगा ना. हमेशा रहेगा, आप कभी भी उसमें बैठो. लेकिन क्या आप हमेशा खुश होंगे जब आप उस कार में बैठेंगे?
1: लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हम खुश हैं.
0: अभी आप ऑफिस से निकले, आपके अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई, अब आप जाके बैठ गए अपनी वो 40 लाख की गाड़ी में, खुश हैं या कम्फर्टेबल?
1: नहीं है, खुश.
0: कम्फर्टेबल तो है ना, लेकिन
1: तो कम्फर्टेबल होते ही मैं थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस बदल सकता है. सी
0: कम्फर्ट तो इज नो डिनाइंग कि हमें फिजिकल कम्फर्ट चाहिए, लेकिन अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर हम एक ही को प्राप्त करने में लगे रहेंगे. हमने कहा आप

0: ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इफ आई एम कम्फर्टेबल आई विल बी हैप्पी, बट एक्चुअली नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। आज मैं 40 लाख की गाड़ी में भी बैठकर हो सके बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, मेरे इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ में कि मैं एक्चुअली सुसाइड करने का सोच रही हूं, या मैं अभी अभी साइकाइट्रिस्ट से ही आ रही हूं उस गाड़ी के अंदर बैठ के।
1: सही बात है, वो तो एक्चुअली
0: आई मीन इट जस्ट द कार इज नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व माय इश्यूज इन लाइफ, द कार इज नॉट बीइंग एबल टू गिव मी हैप्पीनेस।
1: उतनी देर तक तो दे रही है ना हैप्पीनेस,
0: कम्फर्ट दे रही है ना, कम्फर्ट दे रही है। सी, अब हो सकता है कि मैं एक 2 लाख की या 3 लाख की गाड़ी में हूँ,
1: यहाँ अगर मैं एंगर में हूँ, आई एम वेरी एंग्री अपने, या मैं कुछ बहुत पेन में या हर्ट में आती हूँ और यहाँ मैं बैठ जाती हूँ, अब यहाँ पे ये कम्फर्ट भी ना होता तब तो मैं और एंग्री हो जाती।
0: नो डिनाइंग दैट,
1: कम से कम एक नॉच कम तो किया उसने एंगर को,
0: गुस्से को आपको ये कम नहीं करेगा।
1: हाँ, मतलब
0: मेरा शरीर कम्फर्टेबल हो जाएगा तो आपका एक जिस चीज का आपको ध्यान रखना होता है एक चीज आपके यहाँ से निकल जाएगी। लेट्स से एसी भी नहीं है तो बहुत पसीना है तो मैं उस बात से परेशान हूँ, लेकिन चलो कम से कम कुर्सी तो ठीक है ना। ठीक है, अगर कुर्सी भी कंफर्टेबल नहीं होती तो एसी भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, लाइट्स भी इतनी ज्यादा है, तो ऑब्स्टिकल्स जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुझे किसी ने कम्फर्टेबल कुर्सी दे दी तो मेरा वो एक
1: ऑब्जेक्ट
0: जिसके बारे में मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ वो मेरी लिस्ट से बाहर चला गया। लेकिन कुर्सी मुझे खुशी दे देगी
1: ये नहीं,
0: या मुझको ताकत दे देगी,
1: वो बेसिक वो था वो नहीं कर पाती,
0: नहीं करेगी। हाँ, ये है कि कंफर्टेबल कुर्सी होने की वजह से मैं उसके बारे में एटलीस्ट निश्चिंत हो गई हूँ, नहीं तो मैं कुर्सी पर भी बैठ के बोलती रहती बैठा ही नहीं जा रहा, इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है, लेकिन कुर्सी खुशी नहीं दे रही है, खुशी नहीं दे रही। अगर ये मुझे खुशी दे देती तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाऊं ना इस पर बैठते। आई एम स्टिल इन पेन, आई कुड बी इन एंग्जाइटी, आई कुड बी इन एंगर। कुर्सी पर बैठने से आपका गुस्सा कम नहीं हो सकता। हाँ, एक और बात जिसके लिए आप गुस्सा करने वाले थे,
1: वो एक्स्ट्रा गुस्सा नहीं आने देता
0: वो, ठीक
1: है। दूसरा एक और भी है कि थोड़ा सा कम्फर्ट लेवल आते ही आई हैव सीन दैट, मतलब ज्यादातर लोगों के सामने, कि अगर वो बहुत गुस्से में है कुछ है, अपनी कम्फर्टेबल जगह पे आते ही एक बार को तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, मतलब ले सकते हैं।
0: इफ दे डू दैट दैट्स फाइन, बट फिर भी गुस्से का
1: पूरा साइकिल तो चलता
0: है। और जो ये ऑब्जेक्ट्स जो हम खड़े
1: भूल ही जाते हैं उसके बाद, तो जब इतनी मेजर प्रॉब्लम चल रही होती है, येस ऑफकोर्स आई थिंक यू ऑल एग्री कि जब हमारे सामने कोई क्राइसिस आ जाता है तब हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने गैजेट्स खरीदे हैं ये क्या कर रहे हैं।
0: आपने जब पहले दिन अगर बड़ी गाड़ी खरीदी तो एवरीवन इन द हाउस इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड, बट फॉर हाउ लॉन्ग? 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द हाउस। जैसे बाकी चीजें पड़ी हुई हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, फिर वही जीवन है, झगड़े, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही डिस्कशंस, फिर हम कहें कौन सी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लें। सी व्हाट इज हैपनिंग, मेरी जीवन जैसे आपने शुरू में बोला वो यो-यो की तरह जो चल रही है, बहुत उतार चढ़ाव है। अब मुझे कुछ कुछ ऐसा करना है हर थोड़े दिन बाद जिससे आई गो टू द पीक।
1: यस, यू नो, बिकॉज आई, यस,
0: आई अग्रीड कि माय लाइफ इज गोइंग लाइक दिस, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स। अब डाउन्स किस सिचुएशन में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में आती हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग अलोंग विथ पीपल, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार स्वभाव टक्कर में आ रहे हैं, मेरा दर्द है। अब मैं क्या करूं ऐसा जीवन में जिससे मैं अप वाली फीलिंग क्रिएट कर सकूं?
1: क्योंकि जैसे हम ज्यादा देर लो में होते हैं ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर फिर लगता है कि उससे बाहर निकालने के लिए कुछ चाहिए।
0: अब अगर मेरी फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स है और कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड है हम एक दूसरे से, ये चलो आज मैं एक चीज खरीद के लाती हूँ घर के लिए, एक प्लाज्मा ले लिया आज, ठीक है। See, the whole environment in the house changes.
1: Yes, yes, yes. Finish to that, again, वो यो-यो का वो ऊपर वाला आ गया।
0: और सब एक दूसरे से आज बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं, सब कहते हैं आज तो ट्रीट होनी चाहिए,
1: लेट्स थ्रो अ डिनर पार्टी। यू नो, अगेन कई रिलेशनशिप्स में देखा है कई कपल्स में कि जब ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है सो दे डू कि फ्रेंड्स के साथ एक डिनर कर लेते
0: हैं। यस, यस। सो व्हाई आर वी डूइंग ऑल दीज थिंग्स? तो जैसे हम ये लाते हैं घर के अंदर तो एक नवीनता आती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, एक कुछ हमारी वो फीलिंग कि हमने अचीव किया वो बढ़ता है, और सडनली सब लोगों का अटेंशन किस चीज पर चला जाता है, उस ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट आने पर और उसके एक्साइटमेंट पे, तो पूरा एनर्जी लेवल घर में क्या हो जाता है,
1: बहुत अच्छा,
0: इट्स वेरी हाई, एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज टॉकिंग वेरी नाइसली। कल झगड़ा कर रहे थे, कल आए तो आई वॉज कंप्लेनिंग टू द हस्बैंड, हस्बैंड वॉज कंप्लेनिंग टू द वाइफ, बच्चे कह रहे हैं आपके पास तो

0: These are the false
1: no denying, no denying. लेकिन फिर understanding कि कितनी बार चीजें खरीदते रहोगे, कितने बार साल में नई गाड़ियां खरीदोगे, कितने बार नए टेलीविजन, नए मोबाइल, नया मोबाइल आया नहीं मार्केट में तो I want to buy the new mobile.
0: And, you know, now the another thing which has started happening to Sachivani is, I want it. Yeah. People have just, you know, the moment they see it.
1: Now, ये जो आपने expression create किया, I want it. This is an expression of so much, you
0: need,
1: know,
0: need. Yes.
1: So
0: yes.
1: much stress. Till I get it.
0: Mm.
1: So, जब तक मुझे नहीं मिला मेरे
0: You know, I had
1: State of
0: an altercation with my daughter, actually. I don't want to talk about it, but then that happened. She wanted different colored lenses, you know. And why? Because she had seen in the ad, and this was like, I want them. I need them. You know?
1: No, it's not I need them. I want them.
0: I want them, yes. You know, because what for? Everyone else has them.
1: Take it. तो फिर उसके लिए जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो चिड़चिड़ापन गुस्सा हो सकता है घर में झगड़ा भी फिर सपोज वो आ गया तो वेरी हैप्पी कितने दिन
0: गुम अगले दिन गुम जाते हैं बच्चे
1: दो दिन के बाद कोई नया ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम सो वी हैव टू बी नॉट सेइंग दैट वी डोंट वांट दीज ऑब्जेक्ट्स भले घर में जितना खरीदना है खरीदते जाएं लेकिन कई बार तो इन चीजों के पीछे ही घर में स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है कि मेरे घर में ये नहीं है उनके घर में है या हमारे पास ये होना चाहिए तो ला तो खुशी के लिए रहे हैं लेकिन क्रिएट क्या कर रहे हैं इन द प्रोसेस जब वो आ जाएगा बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें हमें क्या देती हैं इट्स बी वेरी क्लियर ये हमें आराम देती हैं आराम देने के लिए बनी है शरीर को आराम देने के लिए बनी है मन को आराम देने के लिए ये नहीं बनी थी और ये शरीर को आराम देने के साधन इकट्ठे करने में कहीं ना कहीं हम मन को तंग कर रहे हैं सारा दिन यू नो आई क्रिएट पेन जेलसी कॉम्पिटिशन एवरीथिंग जस्ट सो दैट आई acquire these objects. तो ये तो comfortable हो गया That's one part of the story. इसका क्या हाल है और फिर इसको तो अगले दिन ये तो comfortable रहेगा जितना दिन कुर्सी पर बैठेगा comfortable रहेगा इसके comfort का ध्यान रखने का क्या तो जितना ध्यान शरीर के comfort का रखते हैं उतना ही ध्यान इसीलिए हमने कहा साथ साथ मन को comfortable करने का क्या
0: तो हमारी ये इच्छा रखना कि मुझे ये चाहिए very true, one thing which you've said, which we need to actually think about, कि हम जो चीजें चाह रहे हैं वो हमें क्या देंगी पहले इस पर हमें क्लैरिटी रहे यू नो बिकॉज दिस इज अंडरलाइन
1: यू नो जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ये हमारे इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से
0: समझ
1: यूज करती है दे आर वेरी गुड साइकाइट्रिस्ट आई फील जो भी एड बनती है वो क्या दिखाती है कि ये जब आप ऑब्जेक्ट खरीदते हैं आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खुश हो जाएगी आपके बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे आपका रूठा हुआ हस्बैंड आपसे खुश हो जाएगा नाउ दिस प्लेज विद माय साइकोलॉजी एंड आई से ओके इफ आई ऑल्सो गेट दिस मेरे भी ये जो सारे लोग हैं ना
0: मुझे
1: खुश हो जाएंगे तो एक चीज है कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों को जो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं वन इज फॉर फिजिकल कम्फर्ट वेरी गुड बट रिमेम्बरिंग खुशी नहीं देगी दूसरा है लोगों को खुश करने के लिए हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि यू नो अगर मैंने ये खरीदा तो मेरा परिवार खुश हो जाएगा एक बार रुक कर चेक करना पड़ेगा उनका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या आज का बच्चों का कितने दर्द में है वो बच्चे आज नोबडी इज लुकिंग एट दैट हम रोज शाम को घर आते आते उनके लिए कोई एक प्ले स्टेशन कोई ये वीडियो गेम कोई ये ले आते हैं सोचते हैं कि ये दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे
0: एक्चुअली वो थोड़ी देर के लिए वो
1: हो जाते हैं एग्जैक्टली जैसे हम अगर मैं खाली हाथ आ रही हूँ तो उन्होंने तो गुस्सा करना आप आए इतने लेट मुझे आज मेरे स्कूल में वो था प्रोग्राम था आप आए नहीं व्हाटएवर सो आई गेट वन प्ले स्टेशन वेल कमिंग फ्रॉम वर्क उनको दे दिया वो भूल गए उस बात को वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए उसको खेला हमें लगा हमने उनको खुशी दी हमने उनको थोड़ी देर के लिए एक स्टिमुलेंट दिया उल्टा हमने उनको और भी उस प्रोसेस से हटा दिया कि खुशी कैसे क्रिएट करनी है हमने उनको एडिक्शंस की तरफ लेकर गए कि जितनी ये चीजें आपके पास आती जाएंगी आपको खुशी मिलेगी फिर कल हम बाद में मुड़कर कहते हैं इनकी तो डिमांड ही नहीं खत्म होती ये रोज नई नई चीजें मांगते सिखाया हमने ही था कि ये कैसे लाना है सो वन इज टू गिव हैप्पीनेस टू फैमिली डिजायर बहुत प्योर है हमें ये याद रखना पड़ेगा इट्स नॉट दैट वी आर बैड और वट एवर हमारी इंटेंशन बहुत प्योर है लेकिन तरीका समवेयर
0: हमने खुद के लिए भी तो यही रखा ना
1: See,
0: somewhere we need to understand. So actually, हम गलत नहीं कर रहे क्योंकि हमने यही समझा कि खुद को खुशी देने के लिए भी तो मैं साड़ी खरीद के लाऊंगी या मैं एक नई ड्रेस खरीद के शॉपिंग में बहुत दुखी हूँ सो आई जस्ट गो एंड बाय समथिंग गुड यू नो लाइक एंड आई बॉट समथिंग

0: और आज वो आप
1: डेफिनेटली ये जो बाइंग समथिंग गुड की चीज है ये हमें थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट करती है, लेकिन साड़ी नहीं क्रिएट करती है, मैं क्रिएट करता हूँ एट द थॉट ऑफ हैविंग बॉट दैट साड़ी। आपने अभी इतनी सुंदर ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन वो साड़ी के पास फीलिंग्स थोड़ी है आपको देने के लिए। यू आर फीलिंग गुड
0: बिकॉज आई ओन दिस और
1: यू अचीव्ड इट। आपने कुछ खरीदा, आपको वो अच्छा लगा, यू वर एबल टू बाय इट, आपने लिया। ये एक पहले थॉट क्रिएट करती है। फिर आपको चार लोग जरूर मिलेंगे जो बोलेंगे न्यू साड़ी कहाँ से ली, बहुत अच्छे लग रहे हो। आपको और वो खुशी मिलती
0: है, वैल्यू मिल गई।
1: साड़ी इतनी देर में कुछ भी नहीं कर रही है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, जिसके पास फीलिंग्स ही नहीं है वो मुझे फीलिंग कैसे दे सकता है। अब चार लोगों के बाद एक पांचवे इंसान ने आकर अगर कह दिया कनुप्रिया दिस कलर आई डोंट नो वेदर इट्स लुकिंग वेरी गुड ऑन यू,
0: आई डोंट लाइक हिम,
1: यू डोंट लाइक हिम एंड यू डाउट द साड़ी आल्सो,
0: गॉड इज इट राइट और नॉट।
1: सी साड़ी वही की वही है लेकिन फीलिंग्स चेंज हो गई। तो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ, फर्स्ट कि मैंने साड़ी खरीदी या गाड़ी खरीदी या नया मोबाइल जो लॉन्च हुआ है वो खरीदा, उसकी अचीवमेंट की थॉट जो मैं क्रिएट करती, एंड ऑपोजिट ऑफ दैट मैं नहीं खरीद पाती अगर
0: तो वो भी मैं
1: तो उसकी फेलियर की थॉट जो मैं क्रिएट करती वो मुझे दुख देता है। मैं नहीं खरीद पा रही हूँ, मेरे आसपास के सब लोग ये खरीद पा रहे हैं। सपोज एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ 20,000 का है, लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो तो वही पुराना वाला है, उसमें वो गाने नहीं बजते या जो भी फीचर्स है नहीं है, सबके पास दूसरा वाला है। मोबाइल नहीं खुशी दे रहा लेकिन ये फीलिंग सबके पास है, मेरे पास नहीं है। फिर जिस दिन मैंने खरीद लिया जो सबके पास है वो मेरे पास, या मेरे पास जो है
0: वो किसी
1: के औरों से भी ज्यादा अच्छा है, एंड देन शोइंग इट टू एवरीवन, नॉट मे बी टू एवरीवन बट एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ कि मेरे पास वो है, ये सब फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं। मोबाइल क्या कर रहा, उसके पास पावर कहाँ है फीलिंग क्रिएट करने की, लेकिन मैं क्योंकि वो मोबाइल खरीदने के बाद वो फीलिंग क्रिएट कर पाती हूँ तो आई थिंक कि मोबाइल मुझे खुशी दे रहा है। मोबाइल कैसे देगा, उसके पास तो है नहीं।
0: हाँ एक्चुअली वेयर यू रीच दिस कि मैंने ये समझा था कि गाड़ी के कारण मुझे खुशी मिल रही है, तो गाड़ी क्योंकि चैतन्य तो नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस बींग नहीं है, मटेरियल है, वो कुछ भी नहीं दे सकती मुझे।
1: फिजिकल कंफर्ट,
0: यस फिजिकल कंफर्ट दे सकती है जरूर, लेकिन खुशी जो है वो मैं खुद क्रिएट करती हूँ। अनहैप्पीनेस है वो भी मैं खुद क्रिएट करती हूँ।
1: एब्सोल्युटली ना, अभी सपोज आपके पास इतनी सुंदर ब्लू साड़ी है, मैं तो नहीं ले सकती। लेट्स से मैं व्हाइट साड़ी पहना है, मुझे तो अलाउड नहीं है ब्लू साड़ी पहनना। अब ये सोच सोच के मैं अंदर परेशान होती, सो लकी कनुप्रिया तो ब्लू भी पहन सकते हैं, रेड भी पहन सकते हैं, आई एम वेयरिंग ओनली व्हाइट, तो ये व्हाइट साड़ी थोड़ी दुख दे रही है मेरे को बैठकर। लेकिन मैं जो सोच रही हूँ उसको, आपको देखकर, अपने को देखकर, औरों को, मैं जो सोच रही हूँ आपको देखकर, आपने जो जो अचीव किया मैं नहीं अचीव कर पाई, तो दिस इज क्रिएटिंग माई दुख। देन आई गेट इन टू दिस कॉम्पिटिशन रेस कि इनके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो मेरे पास आएगा तब मेरे पास खुशी आएगी। नो, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा, मैं क्रिएट कर रही हूँ। हाँ ये है कि मैं डिपेंडेंट हूँ कि जब वो ऑब्जेक्ट आएगा तब मैं वो अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट करूंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा वो वाली थॉट्स,
0: तो मैं अभी भी क्रिएट कर सकती हूँ।
1: अभी भी क्रिएट कर सकती हूँ, एग्जैक्टली।
0: ओके but how I don't have anything to create something, you know,
1: so you object doesn't create the thoughts here
0: no,
1: is the
0: object
1: mobile.
0: Has to be there na, say saree has to be there so that I create the thought.
1: Lekin saree pehenne ke baad wahi humne abhi dekha, char logo ne bola bahut achhi, to aapne wo thought create ki, ek ne kaha not very nice, aapki thought change ho gayi, saree to wahi hai. You are the creator of the thought, aap create kar rahe ho, aapke paas power hai to choose kaun si thought create karni hai, saree wahi hai.
0: नहीं तो साड़ी हो या ना हो, आई कैन क्रिएट अ थॉट कि आई एम हैप्पी, मतलब लाइक साड़ी इज देयर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सी ऑब्जेक्ट है, आपने कहा
1: साड़ी इज देयर, ये थॉट आप नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन ये तो थॉट क्रिएट कर सकते हो कि माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साड़ी, माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हैविंग अचीव्ड बाइंग दैट ऑब्जेक्ट, माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट ऑल आई हैव गैदर्ड, माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट पीपल थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आई हैव अचीव्ड।
0: बट यहाँ से शिवानी, हैप्पीनेस इज नॉट अ थॉट, इट्स अ फीलिंग।
1: या सो जो

0: thought create hogi, phir hi to feeling generate hogi na uske baad.
1: This is we need to talk more about it, because whatever we have talked today is actually a very clear indication ki koi bhi object kuch bhi create nahi karta hai. Wo comfort de sakta hai, वो मुझे यू नो लाइक जो जो उसको देने के लिए जो बना है वो दे सकता है. हैप्पीनेस या कोई भी फीलिंग जो है वो खुद नहीं क्रिएट कर सकता,
0: उसके पास है नहीं.
1: हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज द वी ऑल अंडरस्टैंड.
0: आई नो वी ऑल अंडरस्टैंड.
1: बट ये है कि वो खुशी को अभी तक हम थॉट है ये नहीं मान रहे थे, हमें फीलिंग है. लेकिन थॉट के बाद फीलिंग कैसे आती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ ही कि वो क्रिएट कैसे करना है जो है ही नहीं. इन द सेंस कि आई थिंक वी नीड टू रियली टॉक मोर अबाउट इट. बट थैंक यू सो मच. आज एक और क्लैरिफिकेशन हुआ कि जिन मटेरियलिस्टिक चीजों को हम सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए, और जो वो मुझे इतनी खुशी दे रहे थे, तो ये क्लियर रखना है वो नहीं दे रहे हैं, मैं खुद अपने आप को दे रहा था. यू नो समवेयर आई वॉज गिविंग इट टू माई सेल्फ. थैंक यू सो मच. बहुत लिबरेटेड फील करते हैं. इनफैक्ट अभी तो मैं फील कर रही हूँ कि वो कोई नहीं दे रहा था, ना तो ऑब्जेक्ट और ना ही कोई सिचुएशन भी. अगर हम देखें आज पूरी बातचीत में, ना मेरी गाड़ी ने मुझे दी, दे नहीं सकता, दे वो कम्फर्ट सकता है. मोबाइल बहुत अच्छे फीचर्स के साथ मेरा कम्फर्टेबल कर देता है बात करना, या कोई भी और मटेरियलिस्टिक चीज जो है मैंने क्रिएट किया उसे खरीदते ही कि मैं खुश हो गई. अगर वो नहीं खरीद पाए तो क्या मैं हर बार यही क्रिएट करूंगी कि मैं खुश नहीं हुई, या कुछ और चीज है जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ. अगर मैं उसे नहीं भी खरीद पाई तो मैं कैसे वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ. और वो तो सिर्फ थॉट ही रह गया, वो फीलिंग का बदल बनता है, क्योंकि अभी तक मेरे लिए हैप्पीनेस जो था वो एक फीलिंग है. सो हाउ माई थॉट क्रिएट्स माई फीलिंग, ये एक अलग चर्चा का विषय जिस पर हम बातचीत जरूर करेंगे. लेकिन अभी आज की इस बात से जुड़ी कोई आपके मन में बात उठ रही है, प्लीज फील फ्री, आप हमें जरूर फोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 999-99-344-555, 999-99-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद जामा कुमारी में खुशी के इंडेक्स को देखने के लिए, जांचने के लिए, जहां हमने लो गए वहां हमें हाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा लो हो गया तो हमें बहुत मुश्किल होती है. इसीलिए उसे स्टेबिलिटी पे कैसे लाना है ये प्रयास चलता रहेगा. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने मन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणे रिया आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

हम सभी के जीवन में अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्ति है तो वो है हमारी निर्णय शक्ति, क्योंकि हमारे निर्णयों पर ही तो हमारा जीवन निर्भर करता है। और ये निर्णय हमारे एक्यूरेट होते हैं तब जब हम किसी परिस्थिति, समस्या या व्यक्ति विशेष के प्रभाव से मुक्त हो, डिटैच होकर निर्णय लेते हैं, क्योंकि एक प्रभाव मुक्त डिटैच्ड आत्मा ही एक्यूरेट डिसीजंस ले सकती है। प्रभावित आत्मा अर्थात जो आत्मा अटैच्ड है, उसका कोई भी डिसीजन एक्यूरेट हो ही नहीं सकता।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अभी तक हमने बहुत से एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने जानी वो ये कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा कहना छोड़कर मैं आत्मा हूँ, ये रियलाइजेशन एक सबसे बड़ी बात है जो इस पूरा जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम समझ रहे हैं। और आज हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो आज मेरे ख्याल से हर कोई अवेयर है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन का असली एस्पेक्ट क्या है और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, यहां कहीं आश्रम में जाके ही हम उसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: शिवानी, हम ये तो अच्छी तरह से जो हमने बातचीत की थी कि आत्मा एक एनर्जी है जो यहां है और मैं आत्मा हूं।
1: कैसे आत्मा हूं?
0: मैं एक शांत, प्यार करने वाली और खुश रहने वाली
1: प्योर आत्मा हूँ,
0: एक व्हाइट कलर की तरह प्योर आत्मा हूँ। और मेरे साथ
1: यू नो व्हाइल यू आर सेइंग इट सी योर एक्सप्रेशन,
0: ओके,
1: अपने आप के बारे में इस तरह से सोचते हुए भी यू जस्ट फील सो गुड।
0: यस, एक्चुअली यू नो लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि द मोमेंट वी विल रियलाइज, आई थिंक आई हैड लेफ्ट इट एट दैट, कि जैसे ही मुझे एहसास हो कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो फिर दुनिया कैसी हो, क्या फर्क पड़ता
1: है। नहीं, बट लेकिन तब ये नहीं होता कि कैसी है, तब ये रियलाइज होता है कि हर एक भी तो उतना सुंदर है।
0: बिल्कुल, वो भी उतना ही सुंदर है।
1: द वे आई फील नाइस अबाउट माई सेल्फ आई विल फील नाइस about the other people also.
0: Of course, yes. And then all the problems will go away. लेकिन उसके लिए पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आज क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मुझे सानिध्य मिला तो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन द मोमेंट आई गो आउट इट विल नॉट बी दैट ईजी। एंड अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि मेडिटेशन से पॉसिबल हो पाएगा, पर मेडिटेशन है क्या, ये एक सबसे बड़ा पहला सवाल ये है। और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, क्या मैं कर सकती हूँ, या इट्स लाइक यू नो आई हैव टू गेट इनटू समथिंग एल्स एंड देन गेट इनटू मेडिटेशन।
1: मेडिटेशन के बारे में भी कुछ गलत बिलीफ अगेन, मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट, मेडिटेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मेरे से नहीं हो सकता है।
0: एवरीबडी हैज बीन सेइंग स्टार्ट मेडिटेटिंग,
1: बिल्कुल,
0: एंड आई से ओके बट हाउ,
1: राइट, बट दैट वो इसलिए क्योंकि मुझे ये नहीं पता व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, यू नो, अगर कोई कहे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, बट वॉट एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज, हाउ टू डू इट, एक बार वो पता चल गया देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। लेकिन सिर्फ बोलते रहे कि ये करिए करिए, लेकिन क्या करना है। मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडिरी विच मीन्स टू हील, टू हील, एक वूंड है, एक चोट है, उसको हील करना है, या लाइक वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम टू क्लीन।
0: ओके, बिफोर यू गो इन टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड द रियल एस्पेक्ट ऑफ मेडिटेशन, लेट्स स्टार्ट taking those aspects जिसे अभी तक हम मेडिटेशन मानते आ रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर टू मी ऑल्सो। यू नो, अभी तक मुझे ये था कि आप जिस भी पूजा की जगह पे आप जाते हैं वहां बैठिए, ध्यान लगाइए, ध्यान मेडिटेशन, लेकिन ध्यान मैं किसको लगाऊं, एक मूर्ति को, एक उस पावर को, एक एनर्जी को, और क्या करूं, कैसे ध्यान लगाऊं, यू नो, आंख बंद करके क्या करूं, यू नो, लाइक
1: मेडिटेशन को हम योगा भी कहते हैं, जैसे हम यहाँ पर जो मेडिटेशन हम करते हैं उसको कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन। तो योगा कहते ही पहली चीज जो आ जाती है वो है फिजिकल योगा।

0: प्राणायाम, प्राणायाम, हठ योग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो शरीर के लिए है. यू कैन नॉट मिक्स दैट विद मेडिटेशन. मेडिटेशन इज इंटरनल. मेडिटेशन इज टू डू विद द माइंड. मेडिटेशन इज टू डू विद द सोल. मेडिटेशन आत्मा का कार्य है. प्राणायाम, हठ योग, ये शरीर का कार्य है. दो चीजों को हम मिक्स नहीं कर सकते. और इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं है आपको. मतलब ऑफ कोर्स अ राइट पोस्चर होता है, लेकिन हम यहाँ के यहाँ इसी तरह इस सोफे पे बैठे हुए वी कैन डू मेडिटेशन.
1: मेडिटेशन हैज टू बी साइलेंट. लाइक साइलेंटली हमें कुछ करना है. और हमें क्या मंत्रों का जाप करना है?
0: ये भी एक अलग अलग तरीके है. सी अगेन, देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग. आई विल हैव टू ट्राई इट आउट एंड सी कि मेरे लिए कौन सी विधि राइट होती है. जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी देर हम मंत्र जाप करते हैं उतनी देर हमारे मन में कोई भी और व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा. अगर मैं एक अब वो हो जाता है. जब हम शुरू में करना शुरू करते हैं, एक शब्द को, एक बहुत पवित्र शब्द को लेते हैं और उसका उच्चारण बार बार करते हैं, तो थोड़ा समय तो मन उस पर एकाग्र होता है और उतनी देर कोई और थॉट नहीं आएगा. तो हमारी एनर्जी सेव हो गई, कंजर्व हो गई, नो लीकेज. बेसिकली देयर इज नो लीकेज एट दैट टाइम. लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब मन को एक आदत पड़ जाती है, वही चीज बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं, तो वो वही हो गया. कि अगर रोज सेम खाना खाया, आप घर पहुंचे और रोज वही सब्जी बनी है, तो थोड़े दिन के बाद आप उस सब्जी को खाने से थोड़ा सा कतराएंगे और आप सोचेंगे कुछ और खाते हुए घर चलते. इसी तरह मन जब बार बार वही शब्द उच्चारण कर रहा है, तो थोड़े समय के बाद हम बिना उस पर कॉन्सेंट्रेट किए उसका उच्चारण कर सकते हैं. इट इज लाइक नए रास्ते पर जाते हैं तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब हर रोज उसी रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता. कई बार हम बहुत कुछ और सोचते सोचते लगता है घर पहुंच गए. वी वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग.
1: डेफिनेटली ये जो मंत्र उच्चारण की बात है, चैंटिंग की,
0: सिमिलरली, तो अब आप चैंटिंग कर रहे हैं या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप एक शब्द बोलते जा रहे हैं, साथ साथ मन सोच रहा है आज पता नहीं ऑफिस में क्या होगा, हाँ जी, आज पता नहीं खाने में क्या बना है, कल उसने ये कहा था, आज पता नहीं. तो अब क्या हुआ, जर्नी पे चल रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है किस रास्ते पे जा रहे हैं. तो इसलिए उस मंत्र जाप से जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो लीकेज को हम प्रिवेंट करने वाले थे, वो नहीं हुआ, लीकेज हो रही है.
1: एक और तरीका जो लोग कहते हैं कि आप आंख बंद करके कंसेंट्रेट कीजिए एक लाइट पर और बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, तो इट्स लाइक आई ट्राई बट इट वाज नॉट पॉसिबल.
0: क्योंकि बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, दिस इज मोर और लेस इम्पॉसिबल, यू नो, क्योंकि मन का काम है सोचना. आप उसको दमन नहीं कीजिए, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कीजिए, वो उसका नेचुरल कार्य है. एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा देंगे जबरदस्ती, वो दब तो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होगा, इट विल जस्ट रीबाउंड. तो पानी बह रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी धारा को परिवर्तन कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं. तो मेडिटेशन जो हम सीखते हैं, इट इज नॉट स्टॉपिंग द माइंड. और वैसे भी स्टॉप करके फायदा क्या होगा, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम मेडिटेशन से क्या चाहते हैं. फॉर मी पर्सनली, मुझे मेडिटेशन से क्या चाहिए था, अ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आदतों का, ट्रांसफॉर्मेशन अपने संस्कारों का, परिवर्तन अपनी पूरी जीवन शैली का, अपनी वृत्ति का, अपने दृष्टिकोण का. तो वो मन को दबन करने से नहीं होगा,
1: अपने रॉन्ग बिलीफ का.
0: वो सारा एटीट्यूडनल चेंज चाहिए था मेडिटेशन से. मन को जब हम दबन करते हैं तो कुछ देर के लिए कोई गलत संकल्प नहीं आएगा, लेकिन कोई सही संकल्प भी तो नहीं आया ना,
1: क्योंकि जनरेट ही नहीं.
0: हाँ, तो लीकेज बंद हुई, डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन चार्ज कहाँ हुआ. देयर टू डिफरेंट थिंग्स. आपने डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन क्या आपने चार्ज किया. तो मेडिटेशन शुड बी कि वर्किंग ऑन योर सेल्फ, चार्जिंग प्रोसेस, जिससे कि फिर आप जब सिर्फ वो 10 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट नहीं, आप सारा दिन में कुछ भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन का रिजल्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देना चाहिए. आप जब बैठकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं धीरे धीरे, तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होता है, वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग फिर आपकी सारा दिन वर्क करती है. आप सोल कॉन्शियसनेस जब सुबह बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो सारा दिन आप एक एफर्ट या एक नेचुरल ही रहेगा कि आप सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं, तो मेडिटेशन का रिजल्ट उतनी देर के लिए नहीं होना चाहिए, वो सारा दिन आपके ऊपर आना चाहिए। तो मेडिटेशन राजयोगा, मेडिटेशन राजयोगा अर्थात एक ऐसा योग जिससे हम स्वयं पर राज्य करें।
1: स्वयं मतलब अब कौन
0: सा? पोत पोत द माइंड इंटेलेक्ट संस्कार एंड द फिजिकल ऑर्गन्स।
1: अनदर थिंग व्हिच इज देयर इज सोल बॉडी एंड माइंड दे शुड बी इन सिंक, ये हम सुनते आए हैं
0: राइट right. लेकिन जैसे हमने शेयर किया था कि सोल एंड माइंड ये दो अलग चीजें नहीं है, दो एनर्जीज नहीं है। सोल जब सोचने का काम करती है उसको माइंड कहते हैं। तो मैं आत्मा अपना मालिक जब बन जाता हूँ दैट इज कॉल्ड राजयोग, स्वयं पर राज्य करना, जिसको हम कहते हैं स्वराज्य, सेल्फ सॉवरनिटी, सेल्फ रूल। तो एक आत्मा एक बैटरी की तरह है, जो बैटरी आज थोड़ी सी डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज होने के कारण वो थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, कभी गुस्सा कभी चिड़चिड़ापन, अब उस बैटरी की चार्जिंग करनी है। एक है कि हम अपने आप उसको चार्ज करने की कोशिश करें, जो हम ट्राई करते हैं, जैसे आपने कहा कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेल्फ, ओके वी कैन डू इट, बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि डिस्चार्ज है ना। तो चार्ज करने में, चार्ज कैसे करेंगे बैटरी को?
1: चार्जर इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा के।
0: चार्जर किससे कनेक्ट हो जाएगा?
1: जो मेन
0: सॉकेट है, पावर सप्लाई।
1: ओके,
0: तो पावर सोर्स से जब तक इस बैटरी को नहीं कनेक्ट किया तब तक इसकी चार्जिंग, वो क्या होगा, अगर खुद को ही चार्ज करेंगे थोड़ा सा होगी फिर डिस्चार्ज हो, जैसे ना गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अब उस टाइम है नहीं पावर सोर्स तो हम किसी और बैटरी के साथ थोड़ी देर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो जाता है। फाइनली वी हैव टू गो एंड गेट इट चार्ज्ड। इसी तरह खुद पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं या किसी और से बात कर लेते हैं तो बैटरी तो बैटरी चार्ज है, इट वोंट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, थोड़े टाइम में अगेन डिस्चार्ज। तो अगर रियली चार्जिंग करनी है द बैटरी विल हैव टू बी कनेक्टेड टू द पावर सोर्स। तो उसके लिए पहचान चाहिए, परिचय चाहिए बैटरी का भी और पावर सोर्स का भी, कि किससे जोड़ रहे हैं, कौन है वो शक्ति।
1: बैटरी तो वी अंडरस्टूड लाइक इस,
0: मैं आत्मा हूँ, इसलिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमने लिया कि सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग, लेकिन ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, दिस इज नॉट मेडिटेशन, ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज है। मेडिटेशन इज अ रिलेशनशिप, अ कम्युनिकेशन, एक संबंध परमात्मा के साथ। हमने बहुत सारे संबंधों की बात की और बहुत सारे संबंधों में उतराव चढ़ाव देखे, लेकिन जो एक संबंध जो बहुत वैल्यूबल है और जिसको आज की भागदौड़ में हम शायद कहीं भूल से गए हैं या खोसा गया है, वो है मुझ आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध, ये है योग।
1: एंड वो परमात्मा, वो पावर, जिस पावर, फुल पावर की बात कर रहे हैं जिसके साथ हमें अपना सॉकेट जोड़ना है, वो कहाँ है?
0: उसकी पहचान चाहिए, उसका परिचय चाहिए। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग जब सबसे पहले सेंटर पर आए तो हमने कहा हम तो वैसे भी भगवान को याद करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। प्रेयर और मेडिटेशन, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। प्रेयर इज लाइक वन वे कॉन्वर्सेशन,
1: आस्किंग फॉर इट,
0: हाँ, आस्किंग ऑल्सो एंड वन वे। आप देखो हम जाते हैं मूर्ति के सामने, बहुत आस्था से खड़े होते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, यू नो,
1: कैन वी हियर हिम,
0: हाउ विल अ रिलेशनशिप डेवलप अदरवाइज,
1: कैन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन विद परमात्मा,
0: दैट्स अ रिलेशनशिप ना। आप देखो आप और मैं बैठे हैं, सिर्फ मैं ही बोलती जाऊं, आप बिल्कुल बोले ही ना, तो संबंध कैसे बनेगा? संबंध तो मैं कुछ बोलूं, आप कुछ बोले, मैं कुछ पूछूं, आप कुछ उसका जवाब दें, तब तो एक
1: रिश्ता
0: बनता है। एक बोलता जाए, दूसरे की सुने भी नहीं और दूसरे की राय कुछ भी नहीं करे, तो ये संबंध नहीं है। और प्रेयर में और एक चीज जो थोड़ी सी हो जाती है कि हम अपनी भावना की बात नहीं बोल रहे हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पहाड़ी पर बैठा था, गैया चरा रहा था, तो बोर हो रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गया, तो उसने सोचा मैं भी बोर हो रहा हूँ, भगवान भी ऊपर बैठा होगा, वो भी हम सबको ऐसे ही छोड़ देता है गैया चराने के लिए, जैसे मैंने छोड़ दिया, वो भी बोर हो रहा होगा, क्यों नहीं मैं उससे बातें करता हूँ। तो उसने बातें करनी शुरू की, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, ये हो, आप कैसे हो, व्हाटएवर, अ लिटिल बॉय, वो अपनी वार्तालाप कर रहा था। एक पंडित जी वहां से गुजरे, बच्चे क्या कर रहे हो?

0: जी मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ, तो उसको डांट दिया, तुम भगवान से ऐसे थोड़ी बातें की जाती हैं। फिर उसको श्लोक सिखाए, रटाए, उसको मुश्किल हो रही थी रटने में, उसको रटाए, कहा यही बोलना, ये भगवान से बात करने का तरीका होता है। तो वही बोलने लगा, वही बोलने लगा। रात को कहानी है ओब्वियसली, रात को जब पंडित जी अपने घर पहुंचे और भगवान को याद करने बैठे तो उन्होंने भगवान की आवाज सुनी। पंडित आज क्या किया सुबह, वो छोटा बच्चा कितनी मीठी मीठी अपनी प्यारी प्यारी बातें मेरे साथ कर रहा था, तो तूने क्या करा दिया उसको। अब वो ऐसी बातें कर रहा है जो उसको ना खुद समझ में आ रही है ना उसके पीछे उसका कोई भाव है। सो दैट कैन नॉट बी अ रिलेशनशिप। यू सी, इफ आई पिक अप अ बुक एंड आई लर्न अप अ फ्यू वर्ड्स एंड मैं वही वर्ड्स आपके सामने सिर्फ बैठ के दोहराते रहूं, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप। हम 100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं। मुझे याद है हम स्कूल में खड़े होके प्रार्थना रोज करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भावना मिसिंग है। हमने सिर्फ उन शब्दों को ही मैकेनिकली बोल दिया और सबके वही शब्द है। सबका वही बोल कैसे हो सकता है। तो मेडिटेशन इज कॉन्वर्सेशन, नॉट सेइंग समथिंग विच आई हैव लर्नड अप।
1: Talking to God. Talking to God.
0: Yeah, it's in conversation with God. Absolutely.
1: But then will he talk back to us?
0: What do you think?
1: I don't know.
0: Is it possible?
1: I don't know. And so like if you are saying it, and but I don't think so because I don't know who God is.
0: Atma ka Paramatma se conversation, right? Atma ka Atma se conversation kaise hota hai? Is mukh ke dwara, right? Lekin kabhi kabhi bina mukh ke dwara bhi hamara conversation hota hai.
1: Gestures.
0: Aap ghar baithe, aapko maine phone kar diya. Nahi, gestures ki bhi zarurat nahi hai. Aapko maine phone kiya, aapne kaha main aapko hi abhi yaad kar rahi thi. Kya? Kaun? Kiska conversation chal raha tha? Telepathy. Ek sankalp yahan se create hua, wo aap tak pahuncha. आपसे भी संकल्प आया। कई बार हम किसी के पास अपना प्रश्न लेकर जाते हैं, प्रश्न बोलने से पहले ही सामने वाला व्यक्ति उसका आंसर दे रहा होता है। आपको कैसे पता चला ये मेरा क्वेश्चन था? पता नहीं। Why? Because क्वेश्चन मुख से नहीं बोला जाता है, पहले वो यहाँ क्रिएट हुआ। और अगर सामने वाला रिसीवर ठीक है, क्लियर है, उसका बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, तो माई एनर्जी इज रीचिंग एंड यू विल गिव मी बैक, टेलीपैथी। अगर आत्मा आत्मा के बीच ये कम्युनिकेशन थॉट पावर पे हो सकता है तो आत्मा और परमात्मा से नहीं हो सकता? फर्क क्या? इनफैक्ट इट्स इजियर, क्योंकि यहाँ तो हम सब थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और हमारे बहुत सारा कुछ चल रहा है, तो वो रिसीवर और ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा मैच करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। बट ही इज क्लीन, ही इज ब्यूटिफुल, ही इज वेटिंग फॉर मी। ऑल दैट आई हैव टू डू इज ट्यून माई फ्रीक्वेंसी टू हिम।
1: Lekin at one point, lots of people must be tuning their frequency.
0: But that he is the powerhouse. So a lot of batteries can get connected at the same time. It's energy, it's not physical. Dekho, ye sab limitations of being with so many people at the same time tab aati hai jab ek physical costume aap use kar rahe hai. Paramatma to ek shakti hai, wo nirakar hai, wo power hai. Jaise main ek power hu, wo bhi ek power hai.
1: It's amazing, but it looks so abstract actually.
0: It's not abstract, it's very simple. Once I get his introduction and I get to know him, without that it's abstract. Absolutely. Agar hum kahe ki haan Bhagwan kuch hai, abhi tak kya tha, Bhagwan kya tha, mere liye concept tha. God was a belief. Isiliye abhi tak kehte hain, do you believe in God? You know, aap kabhi nahi kahenge, do you believe in your parents? What is there to believe? They are my parents. मतलब उसमें बिलीव क्या करना है? It's the truth. Similarly, there is no such thing as do you believe in God? God is my father. It's the truth. But अभी तक वो truth को नहीं पहचाना, तो अभी तक वो बिलीव में ही चल रहे हैं. Do I believe in God? Which form of God? God क्या है? तो ये सब चीजों की थोड़ी सी पहचान चाहिए, इसका
1: शिवानी हमारे पास यू नो लाइक वक्त कम है, तो हम पहली चीज यहीं पे क्योंकि कहीं प्रोग्राम खत्म हो जाए और हमें पहुंच ही ना पाए कि कैसे परिचय कैसे मिलेगा परमात्मा।
0: इसी के लिए जो हम राजयोगा फाउंडेशन कोर्स हर सेंटर पे, आज ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में 110 कंट्रीज में फैले हैं, विच इज क्वाइट बिग, एंड टूडे देर आर मोर देन 8,500 सेंटर्स, 8,500 सेवा केंद्र हर इस 110 देशों में है। भारत के तो हर शहर में, मतलब बड़े बड़े शहरों में 100 से अधिक सेवा केंद्र हैं। तो जहां भी आप रहते हैं, आपके 5-8 किलो

0: सेंटर के अंदर अंदर आपको एक सेवा केंद्र जरूर मिलेगा। वहाँ बहने हैं जो परमात्मा के द्वारा ये दिया गया परिचय, परमात्मा का परिचय खुद उसने ही दिया है, और जब परमात्मा खुद अपना परिचय देते हैं तब वो परिचय बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो परमात्मा का उनके खुद के द्वारा दिया गया परिचय वो हमें सेंटर पर जाकर मिलता है। 7 डेज कोर्स है, 1 आवर एवरी डे फॉर 7 डेज, जो समय हम चूज करते हैं, टाइम एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बस थोड़ा सा समय निकालना है, दिन समय सब कुछ हम चूज करें और ये विधि को सीखते हैं। जैसे आप कह रहे थे ना कि मेडिटेशन हम सीखें कैसे, एक्चुअली परमात्मा से संबंध जोड़ना ये सीखना नहीं है, लेकिन उसका परिचय चाहिए, अपना परिचय चाहिए। ये परिचय मिल जाता है, समय का परिचय मिल जाता है और वो विधि मिल जाती है, फिर उसको हम अपने आप कर सकते हैं।
1: यू सेड दिस 7 डेज में, 7 डेज जो एक घंटा 7 घंटों में बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन हो जाता है गॉड का, कि ये और हम उनसे जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस परिचय की जो बात कर रहे थे, तो ये 7 घंटे परिचय के लिए, उसके बाद हमें हम अपने आप कभी भी
0: उसके बाद इट्स अ रिलेशनशिप। सेंटर्स आर ऑलवेज देयर, वो सेंटर है क्योंकि वहां पर जाने से एक यू नो इजी हो जाता है, क्योंकि हम सारा दिन
1: माहौल
0: बहुत हाँ, तो वो वायुमंडल मिलता है, वो शिक्षाएं मिलती हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप हैज बिगन। उसके बाद आपको जैसे समय मिले आप सेवा केंद्र की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन एक विधि सीख ली तो आप उसको घर पे करना शुरू कर सकते हैं, अपना समय निकाल कर, और वो सारा दिन हो सकता है। इट इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम कि आपको इतनी देर मेडिटेशन करना है। इट्स लाइक किसी को प्यार से याद करना है, उसके लिए कोई डिफाइंड यू नो स्ट्रक्चर्ड टाइम नहीं होगा।
1: सबसे बड़ी बात है मैं आपके साथ अपना रिश्ता कितना गहरा करना चाहती हूं,
0: ये तो मेरी चॉइस है,
1: मैं कितना उसमें टाइम स्पेंड कर रही हूँ, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर मी टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, अ स्ट्रांग रिलेशनशिप। और मुझे नहीं लगता कि अगर वंस माय इंट्रोडक्शन हैपन्स
0: राइट
1: आई वुड लाइक टू हैव एनी अदर रिलेशनशिप।
0: नहीं, दैट्स ऑल्सो यू नो, फिर कई बार लोग सोचते हैं अच्छा मतलब इस चीज में जुड़ गए, मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान लग गया, तो बाकी सारे संबंधों से किनारा कर लेंगे, डिटैच्ड हो जाए। दैट्स नॉट ट्रू, ये एक चार्जिंग प्रोसेस है, एंड इससे उल्टा हमारे रिलेशनशिप्स और भी ब्यूटिफुल हो जाते हैं, यू नो, जब हम खुद भर जाते हैं अंदर से, क्योंकि हम अभी तक बैटरी से मांग रहे थे। You know, it's like this. मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो, we got connected to the पावर हाउस। अब हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती,
1: और हम कई बार एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम देना शुरू,
0: एक्स्ट्रा नहीं हो ही जाता है, नेचुरल है, देना नहीं पड़ता है। जो चीज आपके अंदर भर जाएगी, यू आर अ ट्रांसमिटर, देन आप जहां जाएंगे आपकी वाइब्रेशन, आपकी थॉट आपके साथ हर जगह ऑटोमेटिकली जाएगी, यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट फॉर दैट। एंड परमात्मा से संबंध जब जुड़ जाता है तो यू सी, जिसके साथ आपका संबंध होगा आप उसके जैसा बनना चले जाते हैं, एज द कंपनी नो सो विल बी द इफेक्ट। तो सत्संग जिसके लिए कहते हैं, लोग कहते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, वो है उस सत्य का संग करना। सिर्फ हम जा रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, ये सत्संग नहीं है, उस सत्य के संग में रहना, तो संग का रंग
1: अपने आप
0: ऑटोमेटिकली लगता है, नेचुरल है।
1: ओके, इट लुक्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल,
0: इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस,
1: इट इज पॉसिबल, लाइक यू नो सी वी लिविंग इन सच ब्लैक लाइफ।
0: सी आई टेल यू, ब्रह्मा कुमारीज में आज 9 लाख के करीब परिवार है, दे आर फैमिलीज, दे आर नॉट सरेंडर्ड, जो कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस दुनिया से कट गए, आश्रम में रह रहे हैं, नहीं, फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइव्स, चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो अपनी जिम्मेवारियां, अपने संबंध, अपने परिवार सबको संभाल रहे हैं, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जहां हम इतने रिश्ते निभा सकते हैं, क्या एक और रिश्ता नहीं जोड़ सकते,
1: जो कि हमें बाकी सारे रिश्तों को ज्यादा बेटर कर देगा,
0: जो कि मेरे करियर को बहुत अच्छा कर देता है, जो कि मेरी फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर देता है, जो कि मेरी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छा कर देता है, तो वो रिलेशनशिप क्यों नहीं। और उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। आपके साथ अभी बैठे हुए भी मैं उसे याद कर सकती हूँ, तो डू आई नीड टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम, नहीं। तो सब कुछ करते हुए ही ये पॉसिबल है। अगर हम कहें जी अभी नहीं, रिटायर होने के बाद करेंगे, तो इट इज लाइक सेइंग कि मैं अपने जीवन के सारे एग्जाम्स दे दूं फिर उनकी तैयारी करूंगी,
1: बिल्कुल
0: तब पढ़ेंगे बैठ के, नो, द एग्जाम इज नाउ, सो आई नीड द नॉलेज
1: बिकॉज द जर्नी

0: important, you know.
1: Yeah. And then I enjoy the journey.
0: Yeah.
1: It's a beautiful experience.
0: Again, happiness.
1: Or, yeah, a charged battery. You know, you're so full every day. You're so full while you're interacting with people. So, then logon ka jo influence, jo humne sari baat ki, anger, tension, anxiety, logon ka prabhav bahut zyada nahi padta hai. Kyunki aap अपने कंट्रोल में आते जाते हैं तो उसके लिए क्या हम थोड़ा सा समय नहीं निकालेंगे ऑल दैट इट रिक्वायर्स प्रोबेबली 10 मिनट्स एवरी डे टू बिगिन विद 10 मिनट अपने आप से रिफ्लेक्शन काउंसलिंग सेल्फ टॉक परमात्मा से बातें बेस्ट काउंसलर जो सिर्फ काउंसिल नहीं करता साथ में पावर भी दे देता है उस काउंसलिंग को प्रैक्टिकल की लाइफ में इम्प्लीमेंट करने
0: और आज के वक्त में यू नो लाइक द वे वी हैव बिकम सो प्रैक्टिकल आई थिंक जितने भी दर्शक भी देखे इवन टू मी यू नो हमारा जो इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया है इतने लॉजिकल हो गए हैं दिस लुक्स लाइक वेरी लॉजिकल
1: इट इज वेरी लॉजिकल बिकॉज इट्स द ट्रूथ इट्स नॉट इमेजिनेशन ये कल्पना नहीं है लेकिन उसके लिए खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा
0: एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा जो इंट्रोडक्शन की बात
1: है
0: द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी फ्रॉम माई एंड
1: एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा एक्सपेरिमेंट कीजिए वर्क करता है एक्सपीरियंस होता है तो ये सत्य है
0: वाओ वंडरफुल तो मिस्टर शिवानी ये जो पूरा आज जो ये कंसेप्ट यू नो इतना हमने बात की इतने सारे मुद्दों पे बात की जो हमें परेशान कर रही है लेकिन इतना आसान और इतना प्यारा सा सोल्यूशन नजर आया जो कि पॉसिबल है जिसके लिए हम सोचते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता मुझे ऐसे बहुत लोग होंगे सोचते होंगे कि जो दिस इज नॉट डन दिस कांट बी पॉसिबल सो दिस इज इनफैक्ट सो ईजी पहली बात सबसे बड़ी बात जो है कि पहला स्टेप हमें उठाना पड़ेगा क्योंकि आई द सोल हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: थैंक
0: पूरी बातचीत के लिए इतनी सारी पहेलियों में हमने बात की इतना सब कुछ हमने जानने की कोशिश की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है आंसर इतना सिंपल इतना आसान था पहला कदम हमें उठाना है तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं पहला कदम उठाना चाहते हैं तो भाई फोन कीजिए ईमेल कीजिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी जो भी जानकारी चाहते हैं जो भी सवाल आपका है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com तो इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत देने का लेकिन इस वादे के साथ और इस दुआ के साथ कि जो ये पूरी हमने इन्फॉर्मेशन ली है जो एक आत्मा से परमात्मा के मिलन का उस कनेक्शन की हम बात करते आए हैं उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस तरह से उसे अपनी जिंदगी में हम शामिल कर सकते हैं राज योगा के सेंटर्स में जाकर एक बार ट्राई जरूर करेंगे पहला कदम जरूर उठाएंगे आप दीजिए इजाजत नमस्कार

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं धर्मवीर कंबोज जी का, जो कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। धर्मवीर जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मुबारक हो, जितना अच्छा काम आप कर रहे हैं हमारे देश के किसानों के लिए और उनकी स्वउन्नति के लिए जो आप मदद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो।
4: बिल्कुल, मेरा

0: शांति, आप लोग मेरे को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है और मैं जो कर रहा हूँ ये शायद मैं ये कहूँगा कि कुछ बहनें मुझे मिली थी जब मैं अपने जीवन जर्नी में चल रहा था और मेरा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर पड़ता है, मेरा ब्लॉक अब राधौर हो गया है, पहले जगाधरी था। तब उस समय मैंने सोचा था तो मैं कुछ गांव की बहनों के लिए कुछ करूं, तो उस समय में मुझे बहन मिली और मेरा जो ब्लॉक राधौर है आज के दिन वहाँ जठलाना गांव पड़ता है, तो ऐसे वहां से मुझे बहन मिली और जो यहाँ पर काम कर रही थी आपके इस सिस्टम में, तो वो सफेद कपड़े पहनती थी और एक युवा स्टूडेंट की तरह थी। उसने मुझे कुछ बातें की तो मैंने बोला कि मैं अपने गांव में कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी बहनें हैं बेटियां हैं कि वो टेलरिंग का काम करके अपना जीवन यापन करें। तो तब से मुझे ओम शांति के बारे में पता लगा था और मेरे भी सौभाग्य है आप जहाँ से ये आप मुझे बात कर रहे हैं मुझे अच्छा लगा। ये आपका पहाड़ी क्षेत्र में है और ये गुजरात से और राजस्थान से जुड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर भी सर्दी होती है बहुत। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गांव का ग्रामीण किसान रहा, मेरे पिताजी और माताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो मेरी माताजी अनपढ़ थी, मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, वो उर्दू जो बोलते हैं ना उर्दू भाषा होती है वो उसको करते थे। लेकिन मैं जब उनके घर में पैदा हुआ, मेरे पहले एक बहन पैदा हुई और मेरी दो बहने मेरे से एक छोटी और मेरे भाई से छोटी, तो मतलब हम पांच बहन भाई अपने गांव दामला में हमारा जन्म हुआ। तो ये हमारी जीवन जर्नी का जैसे शुरुआत हुआ तो मैं एक भाई होने के नाते अपनी बहनों का या परिवार में माँ का बेटे का बेटा होने के नाते मैं ज्यादा एजुकेशन का ज्यादा वो नहीं था। और जब मैंने मतलब पढ़ाई शुरू की तो उसमें भी मेरा जो एजुकेशन का सिस्टम था बहुत वीक था, क्योंकि गांव में जो है ना मेरे पिताजी उर्दू पढ़ते थे, वो हिंदी नहीं जानते थे और मेरी माताजी तो हिंदी जानती ही नहीं थी, वो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। वो पहले ऐसी शादी हो जाती थी कि भाई चलो ठीक है बच्चे की शादी कर दो, एक दो क्लास पढ़ ले और वो क्लास में भी नहीं गई, वो जमाना था, बहुत इंटीरियर बात है ये। और इंटीरियर लाग गया तो गाँव था मेरा दामला गाँव से मैं हूँ और मेरी माता जी गाँव माली माजरा जो ब्लॉक जगाधरी में पड़ता है उसके इंटीरियर है जो जमुना नदी है उसके पड़ोस में ही कभी भी बाढ़ आ जाती है वहां पर, तो उस इलाके की मेरी माता जी थी और मेरे पिताजी वहां से कुछ 18 किलोमीटर दूर पे गांव दामला था, वो भी यमुना के किनारे था और माता जी का भी मामा जी का गांव भी यमुना किनारे था। उनकी शादी हुई और भगवान की तरह से मेरे मामा जी एक दिन मेरे घर पे आए, मेरी मम्मी जी मेरे मामा जी से बोलने लगी कि हम लोग मेरी मम्मी और मेरी माता जी और पिताजी खेत में मक्का जो होता है ग्रोइंग सीजन जो अगस्त जुलाई का उसमें थोड़ा बड़ा होता है खरपतवार निकालने के लिए निराई गुड़ाई करने के लिए खेत में जाना पड़ता है उनको। तो मेरे को मामा जी घर पे आ गए तो पता लगा कि भाई मैं मामा जी के साथ में जाऊं, तो माता जी ने बोला आप अपना कायदा जो पहली क्लास का है वो साथ लेके जाओ। तो मैं साथ लेके गया और उन्होंने मुझे वहां पर कायदा पढ़ाया, क्योंकि माँ को चिंता होती है वो अपने भाई को ही बोलेगी कि भाई अपने भांजे को तो ही पढ़ा गई, आज मामा ऋषिपाल जी वो भी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया और जो मैं स्कूल में 6 महीने से पढ़ रहा था पहली कक्षा में वो मुझे याद नहीं आता था, मैडम शर्मा जी हमको पढ़ाती थी स्कूल में उसको पढ़ा नहीं आता, लेकिन मेरे मामा जी ने जब मुझे पढ़ाया ऐसे आम ई से ईख जो गन्ना होता है ईख है और इस तरह का जब उन्होंने ऊसे ऊंट वैसे बकरी ऐसी बातें मैं एकदम समझ गया, जब मैं स्कूल में समझ पाया वो मामा जी ने मुझे मक्के के खेत में जहाँ मम्मी पापा निलाई गुड़ाई कर रहे थे वहां पर समझ गया है।
1: इसका मतलब कि जब आपके मामा जी ने आपको प्रकृति से चुने हुए चीजों को लेकर के ही आपको ज्ञान समझाने की कोशिश की तो आपको ज्यादा सरल रीति वो समझ में आया जनरली।

0: ऐसे समझाया जाता है जिससे कि उनका तारुम तार ही नहीं होता, कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। लेकिन जब प्रकृति में ही जो चीजें हैं उनको लेकर के जब किसी चीज को समझाया गया तो आप जल्दी आसानी से समझ गए।
1: मैं कह रहा हूँ मैं 6 महीने से ज्यादा हूँ, मेरे आज भी ये बातें याद है कि जब मैं अगले दिन स्कूल में गया तो मैंने अपनी जो बहन जी, हम बहन जी बोलते हैं टीचर को है, उस जमाने में है, और बहन जी को जब मैंने बोला कि मैं समझ गया, अब मुझे याद आने लग गया और ये जो लिपि है प्रज्ञा जो भी है उस लिपि को मैं समझ गया, और मैंने बहन जी को बता दिया, मैंने पढ़कर समझा दिया कि ऐसे अनार और ऐसे आम हैं और ई से ईफ हैं और ये सारा मैंने वैसे बकरी है, और मैंने उनको जैसे झंडा है सारा मैडम जो है ना हमारी, मैं तो मैडम इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के जमाने मैडम बोलते हैं, तो बहन जी इतनी अप्रिशिएट होती, ये क्या करती है, कब से सीख गया ये है? सबसे लायक बच्चा ये तो पूरा अब तो पढ़ने लगे हैं। तो उस खुशी को, उस बहन जी की खुशी को मैंने महसूस किया और उसने जो है ना मुझे, मैं सबसे पीछे बैठ कर मुझे आगे बैठा दिया है। तो ये तो रहा मेरा पहली कक्षा का चैप्टर है जी, जिसमें मैं अपनी मम्मी को और पापा को ज्यादा, मामा जी को, मम्मी को और मामा जी को वो भी नहीं है दुनिया में और मामा जी भी नहीं है, लेकिन उनको मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने मुझे अपने हिसाब से समझाया और मैं सीख गया, जो मैं सबसे बुद्धू था स्कूल में है जी। अब आ गए छठी कक्षा, छठी कक्षा आ गई, मैं पढ़ते पढ़ते पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी क्रॉस कर गया, मैं बढ़िया समझ गया सारा, और छठी कक्षा में आकर के आ गई अंग्रेजी है
0: जी।
1: अंग्रेजी में एबीसी डी है, अब ये प्रॉब्लम आ गई है, अब मैं फिर ब्रेक मार गया उसमें है, अब मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है, अंग्रेजी नहीं आ रही है तो मैं, लेकिन देखने में अच्छा लगता था, और दूसरा ये भी थी कि भाई ना हमारे गांव में ना वो कपड़े बेचने आते थे लोग साइकिल पर, साइकिल के ऊपर कुछ कपड़े लेके आते थे, जैसे उसमें आपने रजाई का कपड़ा लेना, सर्दी थी ना हमारे यहाँ काफी, और बिस्तर का जिसको बोलते हैं बिस्तर का निचले है, और एक तो बेड के ऊपर बताते हैं बिस्तर, और एक होता है रजाई है फोड़ने के लिए, तो उसमें खद्दर के कपड़े होते थे निचले वाले बिस्तर पे ना, वो खद्दर के कपड़े होते थे, तो मैंने उनसे बोला कि मैं तो खद्दर का कपड़ा लेंगा मम्मी जी है, तो मैंने खद्दर का कपड़ा सिलवाया ले लिया, और वो लट्ठा था, तो लट्ठा बोलते हैं अब उसको, वो मतलब हाथ से काटा जाता है सूत से लट्ठा कपड़ा, तो ऐसे मैंने उससे वो सफेद कपड़ा खरीदा और मैंने उसको सिलवाया, क्योंकि वो 3 रुपये मीटर मिलता था है, अब मेरा 2-2.5 मीटर में मतलब 6-7 रुपये मेरा कुर्ता पैजामे का कपड़ा मुझे मिल गया है, और मैंने उसको अच्छे दर्जी से सिलवाया और मैं नेताजी बन गया है। तो देखने वाले मुझे बोले तो जवाहरदार लग रहा है, नेताजी लग रहा है, स्कूल वाले बोले तो हमारे यहाँ स्कूल में नेताजी जवाहरलाल बोल के आ गए, अरे मेरा लोगों ने मजाक उड़ाया। तो ये क्या हुआ, वहाँ 14 नवंबर को मतलब बच्चों को स्कूल में लेक्चर देना था कुछ है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लेक्चर देना था है, तो मेरे वो कपड़े पहन के मैं स्कूल में गया, और मैंने जब वहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई कि आप लेक्चर दोगे, अब मैं लेक्चर कैसे दूँ, अंग्रेजी में मैंने बोलना था, तो सर क्या हुआ, अब मैं अब अंग्रेजी कैसे बोलूँ, मैंने अपने चाचा जी से पूछा, चाचा जी थोड़ा हिंदी भी जानते थे, उर्दू भी जानते, अंग्रेजी पिताजी तो नहीं जानते था, तो चाचा जी ने अंग्रेजी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो मुझे पोयम जो है ना वो लिखी हुई हिंदी में मैंने उसको कन्वर्ट करवाया है, छठी कक्षा में हिंदी की पोयम थी हमारे पास, इंग्लिश में पंडित जवाहरलाल की पोयम थी छठी कक्षा में, तो चाचा जी से बोला कि चाचा जी इंग्लिश से मेरे पास आती नहीं, तो आप इसको ना आप अंग्रेजी में बोलो, मैं इसको हिंदी में लिख लूंगा, ऐसे चाचा ने उसको इंग्लिश में बोला, मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, और मैंने खेतों में जाकर के जोर जोर की आवाज से चिल्ला चिल्ला करके उसको बोला है, पंडित जवाहरलाल वाजे ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया है, ऐसा बोलने शुरू कर दिया है, ग्रेट लीडर का लेक्चर रूम मैंने वहां जाकर के दे दिया 14 नवंबर स्कूल में।
0: जो मुझे समझ में आ रहा है आपकी इस कहानी

0: से कि बचपन से ही आपके अंदर एक हुनर छुपा हुआ था जो था कि किसी भी समस्या का अपने रीति से एक समाधान ढूंढ निकालना।
1: चलो,
0: तो
1: वहां से मैं ग्रेजुएटर बन गया स्कूल का, है।
0: जी
1: लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद में, मैं जो बड़ी मेरे 9th कक्षा है, 8वीं कक्षा है, मैट्रिक है, वो मुझे ग्रेट रीडर बोलने लग गए हैं। ग्रेट रीडर है, ग्रेट, मेरा नाम ग्रेट रख दिया, तो कोई बात नहीं। अब 9th कक्षा आई फिर मैं फेल हो गया। मैं क्या करता था, मैंने ना 6ठी कक्षा में जो गांव में जो पावर थे हमारे, तो मैं हूँ, तो मैंने देखा कि बिजली आ गई गांव में है, और जो हीटर होते हैं, हीटर जिसमें हम चाय बनाते हैं आज की डेट में, वो बड़ी एक प्लेट होती है, उसमें एक वायरिंग होती है गोल गोल गोल गोल, वो तार होती है, वो लाल हो जाती है जब उसे करंट लगाएंगे, है, तो उससे चाय पका लो उससे, या फिर कमरे में से जला लो। तो ऐसे मैं सीखा, और मैंने अपने स्कूल के साथियों से कोई 70-80 हीटर, जो डिस्पोजल घी के डिब्बे होते थे, डालडा घी के, उन्हें प्लेट लगाई, उनमें वो वायरिंग लगाई, और उसमें वो जैसे प्रेस का, प्रेस में डालते हैं हम लोग के, प्रेस में करंट चला गया, इस तरह को लेके सारा प्लग प्लग, उस तरह हीटर बना करके मैंने कम से कम जो है ना वो 70-80 हीटर गाँव स्कूल में बच्चों को बेच दिए, जिसमें मैंने प्रति हीटर मतलब 4 रुपए प्रति हीटर का मुनाफा हुआ। तो ये मेरे को अच्छा लगा, और गाँव के स्कूल के बच्चों ने मुझे इससे दिए, ये अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैं फिर फेल हुआ 6ठी में, फिर ऐसी 7वीं पढ़ा, 8वीं पढ़ा, फिर 9th में, फिर मैंने मास्टर हमारे को मिले डी डी शर्मा जी, तो बोले देखो भाई ऐसा है, बिजली भाग गई है और बिजली चली गई, अब क्या करें, बिजली को आती नहीं ज्यादा, और तो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, तो कुछ समाधान निकालो आप, तो
0: जी
1: हमने समाधान निकालने शुरू कर दिए। तो फिर मैंने एक ऐसा वो बनाया जुगाड़ कि भाई ये बिजली भागेगी और मैं बैटरी के सेल से लाइट चार्ज कर दूंगा। वहां से डायोड बाजार से खरीद के लेके आया, दुकान पे गया, जो रेडियो के डायोड होते हैं वो खरीद के लेके आया, जो रेडियो की बेल की शटरी को पकड़ते हैं ना, तो वो डायोड
0: जी जी
1: होते हैं छोटे कैप्सूल होते हैं, बारीक कैप्सूल एकदम, है, क्या बोलेंगे आपको, जैसे जौ का दाना होता है ना, इतना बड़ा डायोड होता है, दो दाने होते हैं जुड़ी, तो ऐसे में खरीद के लेके आया चार पूछ करके। तो ऐसे मैंने वो डायोड जोड़े, वो एसी को डीसी को कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे मैंने एक इमरजेंसी लाइट बना दी 9th कक्षा में, है। और वो 9th कक्षा में जो इमरजेंसी, भाई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो बिजली चली जाएगी, बिजली चली जाएगी तो डॉक्टर ऑपरेशन को लाइट कौन जलाएगा, गैस कौन जलाएगा, लैंप कौन जलाएगा, तो जैसे ही बिजली गई तो बैटरी की लाइट जल जाएगी। तो उसमें मेरे जिले में मुझे अवार्ड मिला, मेरे को बड़ी खुशी हुई। लेकिन ये 9th भी चली गई, फिर मैट्रिक में, 9th में तो फेल होकर के दोबारा कर लिया मैंने, लेकिन मैट्रिक में आ गया। अब मैट्रिक में भी मैं फिर दोबारा फेल हो गया, फिर एक बार और फेल हो गया, तीसरी बार में मैं मैट्रिक की, सर मैं जवान हो गया। स्कूल में मेरे जो साथी थे, जो 5वीं कक्षा में पहले तो समय पढ़ते थे हमारे साथ, कोई मैट्रिक में चला गया, तो कोई बैंक में चला गया, कोई मतलब किसी और जगह नौकरी लग गया, लेकिन मैं तो अब कॉलेज में गया पहले बार। कॉलेज में जब जाने लगा, कॉलेज में क्या हुआ, मैं एक दिन कैंटीन में गया, और वहां मैंने एक चाय का कप मंगाया, समोसा बड़ा टेस्टी बना था कैंटीन वाला, तो मैं चाय समोसा
0: जी
1: लिया, तो मुझे याद आया कि तेरी माता जी बीमार है भाई, तेरी बहन बीमार है, तू यहाँ समोसे खा रहा है, चाय पी रहा है, कप में है, और इलाज तो दवाई का पैसा है, ये तो तू खा गया है, तू ये तो बेटे को पैसा दे रहे थे पिताजी को, है, कि जा कॉलेज में पढ़ के या कुछ बन। तो साहब मेरा कॉलेज की मैं कैंटीन से उठा, वो तो चाय समोसा ऑर्डर तो कर दिया, पिया थोड़ा, पिया अच्छे दिमाग में घूम, क्योंकि मुझे बहन की दिमाग में है, वो बड़ी परेशान है और माता जी बड़ी परेशान है, और तू चाय समोसे खाता है। मैंने वहां आधा समोसा खाया, और वैसे पता नहीं पूरा खाया नहीं खाया, लेकिन मैं उदास हो गया, और आज से मैं कॉलेज बंद करता हूँ, पहले अपनी बहन का इलाज कराऊंगा, अपनी माता जी का इलाज कराऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दीवान हूँ, मैं खरीदार हूँ, अब तो मैं कम से कम ले भी जाए तो 22-23 साल को हो गया, क्योंकि बच्चे 16 साल के जो मैट्रिक कर जाते हैं, लेकिन मैं तो 22-23 साल लगा दिए ना, 5 साल तो इसलिए एक्स्ट्रा कर दिए ना मैंने,
0: जी
1: फेल
0: और
1: हो
0: तभी
1: गए
0: आपने
1: सर।

0: बाद में क्या हुआ, मैं अपनी माता जी को गर्मियों का महीना था जुलाई का, और मैं उसको करनाल हॉस्पिटल लेके गया, वहां से उसका इलाज कराना शुरू किया। वहां एक्सपायर होने की तैयारी में थी, मैंने पिताजी को बुला दिया कि भाई देख पापा, ये आपकी वाइफ है, आपकी पत्नी है, मैं तो बेटा हूँ, जो आप कर सकते हो आपसे एक बार मिल लो, कहीं सुबह तक कहीं गड़बड़ ना हो जाए, जो मुझे लग रहा है। मैं माता जी को जब वो बाथरूम से आई, मैंने उसके बाल सेट किए और बेड पे बिठाया, बाल सेट किए उसके, और मैं बोला माता जी क्या हाल है। माता जी बोल नहीं पाए, मैंने उसको बोला माँ आप बोल रही हो मेरी बात, वो सुन रही हो। उसने हाँ करी तो मैं सुन रही हूँ। मैंने बोला माँ आप जिसको ज्यादा भक्ति करती हो, जिसको ज्यादा भगवान को प्रेम करती हो, उसको याद करो, लेकिन मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा है। और माता जी ने मेरे को, मेरे आंजू आ गए, उसे देखे आंजू, क्योंकि उसका आवाज नहीं काम कर रही, इसलिए उसका माइंड काम कर रहा था, सुन रही थी। उसने मेरे हाथ पे सिर फेरा, बेटे घबरा मत, ऐसे इशारा किया उसने, वो उंगली से भी इशारा किया उसने है कि मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन आफ्टर सम टाइम माता जी ऑफ हो गई वहां से, पिताजी भी आ रहा और सारे आए, उसको जड़ी बूटी को लेकर चले गए हम लोग। तो ऐसे फिर उसके बाद में मैंने शादी करा ली, तो घर में कोई खाना बनाने वाला था नहीं। मैडम आ गई घर पे, तो मैडम कहने लगी तेरी तो बहन बीमार है इस घर में, मैं कैसे रहूंगी, उसकी मेरे को कराने की आवाजें सुनती है, मैंने उससे चिंता ना कर, मैं उसका इलाज कराऊंगा, तो घबरा मत, तो अपना काम देख।
1: धर्मवीर जी मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कोई व्यक्ति जिसके जीवन में इतनी समस्याएं थी, जो एक साधारण पढ़े लिखे भारतीय नागरिक जैसा नहीं था, लेकिन जिसके जीवन में इतनी सारे उतार चढ़ाव थे, वो एकदम से ऐसे कैसे इन चीजों का जो नवीनीकरण है, जो नए नए उत्पादन करना या मशीन बनाना ये सब करने लग गए, कैसे ये आपके पास ख्याल आया कि मैं एक ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव वाला फूड प्रोसेसर बनाऊं जिससे कि किसानों की समस्या का समाधान हो जाए। तो वहां से यहाँ तक का सफर बड़ा ही रोचक रहा होगा, लेकिन मुझे ये जानने का है कि आपको किसानों के प्रति ये जो सोच है ये कहाँ से आई?
0: देखो मैं किसान का बेटा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी बात को समझो, मैं इसको शॉर्टकट में ले रहा हूँ। भैया देखो आप, वो बहन का भी इलाज कराया मेरे बहन ने, वो उसका ऑपरेशन हुआ, उसके पैसा मेरे पर लग गया है, मैंने उसको इधर प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाया, फिर वहाँ बहुत पैसा लगा, फिर मैं उसको पीजी चंडीगढ़ लेके गया बहन को, उसका इलाज कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैडम ने बोला था कि इलाज कराओ कि सारा फेंका है, तो वो मेरी बहन ठीक हुई। तो जब मैं घर आया तब उसके बाद में मेरे एक बेटे ने जन्म लिया, वो भी हॉस्पिटल में लिया, उसमें मैंने खर्चा किया, मेरे पास बहुत देनदारी होगी एकदम, मैं किस किस के पैसे लौटाऊं, जहां से उधार लिया मैंने इतनी, वही जैसे मान लो 24 दिसंबर को बेटी ने जन्म लिया और 27 दिसंबर को हम हॉस्पिटल से घर आए प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो कुछ मांगने वाला पैसा जिसको मैंने पैसे देने लोगों को, तो एक आदमी मेरे घर आया और पिताजी बोला कि पैसे इसी से ले, मेरे से नहीं पैसे मांग, किसी से मांग पैसे, ये जवान लड़का है, ये कर रहा है, जो ट्रेनबाजी हो रही है। मैंने उसको बोला कि घबरा मत, मैं तेरे पैसे दे दूंगा मैं, या कम से कम तुझे कुछ चाहिए मैं दे दूं, तेरे को एडवांस वैसे दे दूं, कुछ दू मतलब अपना सोना दे दूं, घर का कुछ और दे दूं, अगर कैश चाहिए तो रुक जा है, मतलब बेइज्जती ना कर मेरे पिताजी के सामने, पैसे वाले को ऐसे ही बोला मैंने, वो चला गया। और मैं शाम को अपना वहां से निकला, मेरे हाथ में हैंड वॉश थी एक, मैंने अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लिया और मैं एक बस में बैठा, ट्रक में बैठा और मैं लाडवा उतरा। लाडवा में मैंने जो है ना अपनी हैंड वॉश जो है ना एक दुकान पे रखी, 70 रुपए लिए, मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाके रात को उतरा, बहुत सर्दी थी, 27 दिसंबर की रात थी, मुझे मैं भूल नहीं सकता रात को कैसे मैं गुजारा आ रहा, तो वहां पर हाथ से एक्सेप करके, कोई मेरे पास कोई रजाई नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई लोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहां पर से सुबह निकला और मेरे पास जो है ना हैंड वॉश के बाद में मेरे पास जो है ना कोई 25 रुपए रह गए वहां रात को चाय चू पीने में। और वहां से मैंने देखा भी यार पैसे वापस जाने का भी गाँव नहीं रहा, तो चलो मैंने एक रिक्शा मिली, उसमें कंबोज गैरेज लिखा था, मैंने बोला भाई तू मुझे वहां छोड़ दे, जो तेरी कंबोज गैरेज है वहां छोड़ा, मैं कंबोज बरादरी से हूँ, तो उसने वहां छोड़ दिया मुझे, वहां छोड़ दिया। तो वहां पर से मैंने उसको बोला सेठ को कि ये मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और ये मेरा टिफिन है, मेरे पास यही है, मैं गाँव से आया हूँ और बहुत आर्थिक प्रॉब्लम है, मैं तो रोजगार की तलाश में आया था, यहाँ मैट्रिक करने वाले को नौकरी मिलेगी दिल्ली में, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला, मुझे रिक्शा किराए पे दे दी, उसने मेरे को एक रिक्शा दे दी और ये मेरे को उसमें रख लिया है, तो मैं

0: चले गए दिल्ली मेरे से कहने लगा। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पर एक मैं गली में निकला, वहां से उस गली में निकला, वहां फ्रूट जैम बिक रही है। मैं बड़ा हैरान हो गया कि यहाँ मेरा अमरूद का बाग है गांव में और यहाँ गुआवा जैम जो है ना 200 रुपए का 200 ग्राम बिक रहा है, 200 ग्राम बिक रहा है 200 रुपए का। यहाँ पर जो है ना एप्पल का जो सेब है वो जो है ना आधा किलो जो है ना वो जो है ना मतलब 40 रुपए का बिक रहा है। और यहाँ पर टमाटो सॉस बिक रहा है, टमाटर की फोटो लगी उसमें कांच की बोतल पे। ये मैं देख के हैरान हो, जो गांव में कभी हमने देखा ही नहीं है। मैं रिक्शा चलाने लगा और एक रिक्शा वाले ने बोला तू इधर से इधर घूमता रहो भाई। मैं इधर से इधर पुरानी दिल्ली से लाल किला, लाल किले से फतेहपुरी, फतेहपुरी से लाल किला, ऐसे घूमते घूमते वहां पूरा बाजार है, वो तो है वहां देश को दुनिया में लोग आते हैं। वहां पर मैंने जड़ी बूटी की मंडी देखी। जब जड़ी बूटी की मंडी देखी, एक एक जड़ जो होते ना, जड़ एक मतलब एक इंच की जड़ जो है ना वो आपको 10 ग्राम जो है ना आपको 100 रुपए की मिलेगी उस जमाने में है, एक इंच की जड़। जैसे कोई भी जड़ है, मूली की जड़ तो मोटी होती है, मूली मोटी होती है, ड्राई वहां पर बहुत महंगी। अकरकरा की जड़ है, अश्वगंधा की जड़, ये बहुत जड़े हैं ऐसी। जब मैंने बोला यार ये तो हमारे यहाँ वैसी ग्रो होती है जड़े, हम तो किसान आदमी है, हम तो ट्रोली की ट्रोली ग्रो कर देंगे भाई। गाँव में ट्रोली ट्रैक्टर है और किसान हम लोग, खेती हमारे पास है, हम तो ऐसी जड़े पैदा करके बेच देंगे। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर मैंने देखा कि बड़े बड़े गुलाब की परफ्यूम बहुत महंगी है। परफ्यूम हमने पहली बार देखी, मैंने शादी में भी क्या ना जो परफ्यूम वो तो पता नहीं कैसी होगी, लेकिन वहां पर मैंने पहली बार ऐसी परफ्यूम देखी कि रोज परफ्यूम है बहुत महंगी देखी, चंदन की परफ्यूम बहुत महंगी देखी। मैंने बोला हम किसान है, हमें करेंगे है उस सर। ऐसे मैंने वहां पर बहुत परफ्यूम देखने को मिला, स्पाइसी परफ्यूम देखने को मिली, वो भी दिल्ली के बाजार में। पहले बार गांव में कहां से चीजें देखने को मिलती थी है। ऐसे करते करते एक लाइब्रेरी थी वहां पर दिल्ली में, उस लाइब्रेरी में मेरा, मैंने लाइब्रेरी में जाता पुरानी दिल्ली एग्जीबिशन के पास, उस लाइब्रेरी में बैठता, उसमें देखता अंग्रेजी की किताबें, यूरोप की सब्जियां कौन सी हैं, यूरोप के फ्रूट कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया के फ्रूट कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया की जड़ी बूटियां कौन सी हैं, ऐसा मैं सर्च करने लग गया है। और हमारे इंडिया की कौन कौन सी हर्बल हैं, ऐसे मैं इंग्लिश में सारा उनको पढ़ा। तो ऐसे पढ़ता और समय पास करते थे। मेरा एक्सीडेंट हो गया वहां पर, मैं वहां पर पुरानी दिल्ली से कांगड़ा स्टैंड था, वहां कोरिया पुल पे पुरानी दिल्ली के बस, वहां से दो सिल्ली बर्फ की लेके मैं पीली पुटी जा रहा था। एक फीट कार ने मेरे को टक्कर मारी, मुझे दिखा काली फीट कार ने टक्कर मारी है दिखा, बट जब मैं जैसे गिरा सब मुझे नहीं पता, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं जब एक मैं होश आई, मैं बैठा, मेरा बर्फ का पानी बन रहा था, टुकड़े बन रहे थे और रिक्शा भी टूटी थी और मुझे किसी ने उठाया नहीं साहब जी। कम से कम उठा दे तो पूछ ले कि तेरा क्या हाल है, एक इंसान इंसान की मदद नहीं कर रहा वहां पर, वो लोग चाह रहे हैं दिल्ली वाले। मैं बैठा हुआ, मैं होश आई, मैं बैठा हुआ, मेरी रोली आ गई साहब जी। कम से कम मतलब जो मेरी बेटी छोटी जिसका श्रीमती जी वो जिसको छोड़ के आ गया था और मेरा को मदद ही नहीं कर रहा है, क्या करूँ इस दिल्ली का, मैं जा रहा हूँ दिल्ली को छोड़ के, क्या मेरे कोई आई नहीं, पाई नहीं, पाई नहीं, बहन नहीं, कोई ताऊ चाचा नहीं आती है, सब लोग बिजी हैं, क्या कोई किसी मदद करने वाला नहीं। मुझे पता अगर आज मैं मर जाता तो मैं बच गया, मेरे यहाँ कोई इलाज करने वाला भी नहीं था, मेरे को पानी पिलाने वाला नहीं है, मुझे पता है यहाँ कोई पानी नहीं पिलाता, सब सब मतलब के लोग हैं। तो साहब मैं तो जी भी वो बच गया, मैं जब भी रिक्शा वाले को बुलाया और अपने रिक्शा को लोड कराया उस रिक्शा के पीछे वो टूटी वो, और मैं बैठ के वहां जिस सेठ से वो फिर चली थी मैं उसको पकड़ाई कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ साहब, मैं गांव चलाया।
1: एक बहुत ही जबरदस्त अनुभव आपने शेयर किया हमारे श्रोताओं के साथ की एक ऐसी भागती जिंदगी जहाँ पर लोगों के पास एक सामने वाले व्यक्ति की मदद करने का समय नहीं है, ऐसे जीवन में कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, इसका कुछ पता ही नहीं है। और ये जिस दर्दनाक अनुभव से आप गुजरे हैं उसके लिए हम सब आपके हौसले का, आपके ताकत का सच में बहुत बहुत उत्साहवर्धन करते हैं कि आपने जो अनुभव किया है और जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कर रहे हैं, ये जीवन की वो अनुभव है जो एक इंसान को इंसान से ज्यादा कहीं आगे ले चलता है, उसकी इंसानियत को भी मजबूत करता है, उसके अंदर की ताकत को भी मजबूत करता है, और वही ताकत आज आपको आगे भी बढ़ा रही है, और आज आप एक बहुत सुव्यवस्थित और साथ ही साथ एक बहुत ही विख्यात और एक बहुत ही लोगों के लिए आदर्श बन चुके हैं आप। और जो काम आज आप धर्मवीर कंबोज कॉरपोरेशन के द्वारा, अपनी कंपनी के द्वारा जो आप मदद पहुंचा रहे हैं गांव गांव तक, किसानों तक, जनमानस तक, उसके लिए सच में आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं।
0: सर मैं घर पे आया, पिताजी को नमस्ते करी, गलती माफी मांगी कि मेरे पिताजी मुझे एक्सेप्ट करें, मेरी गलती होगी, मैं आपकी बात पे चला गया था। लेकिन फिर मैंने जो है खेती बाड़ी में खूब जोर लगाया और मैंने वहां पर गांव में टमाटर की खेती शुरू की, और ऐसी टमाटर की खेती शुरू की जो मैंने दिल्ली में टमाटर देखे थे, हाइब्रिड टमाटर। तो मेरे खेतों को देखने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर आए जी, गांव के किसान आए जी। हाँ, फिर मैंने मक्का की खेती शुरू की, उसमें जो बेबी कॉर्न होता है उसको पैकिंग करके मैंने दिल्ली बेचना शुरू किया, और मैंने बम्बई भी बेचना शुरू किया, और मशरूम की खेती की डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के साथ मिलकर के, और मैंने मशरूम को बम्बई बेचा, और मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती भी शुरू की, और उस स्ट्रॉबेरी को मैंने जो है ना कलकत्ता बेचना शुरू किया, अपने गांव से ही जहाज में लेके जाता था यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से जहाज में। तो मेरा अखबारों में नाम आया, मेरा खेत पे डिप्टी कमिश्नर यमुनानगर आए देखने के लिए, मेरा बेबी कॉर्न की खेती, मैंने तीन फसलें की थी, नीचे गर्लिक गर्किन गर्किन जो छोटा कीड़ा होता है, ऊपर मतलब बेबी कॉर्न, उसके ऊपर मतलब करेला, तीन फसलें ये जो ना उसमें जापान के मैगजीन में छपे थे, जहाँ जापान की गुड़िया फेमस होती है वहाँ धर्मेंद्र दामला यमुनानगर का भी नाम वर्ल्ड में मैंने जापान की मैगजीन में छापा था। तो इस तरह मेरा हौसला आया, मीडिया ने मेरा साथ दिया, और डीसीएम ने मेरे साथ मेरे खेत देखने आए, तो ये पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। 1995 में डीसी यमुनानगर मेरे खेत पे आए, जो आजकल संजीव कौशल जी जिला यमुनानगर डीसी थे, आजकल वो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के हैं जी। तो अच्छा। बड़ा बड़ा हौसला बढ़ा, उसके बाद में हौसला बढ़ गया, अधिकारी मेरे खेत में आने लग गए, और मैंने फिर जो है ना उसके बाद में जड़ी बूटियों में सप्रे करता था, तो बैंगन करना, स्ट्रॉबेरी करना, टमाटर करना, और फसलों को जो कीट पतंगे लगते उनको मार देना है। तो मुझे महसूस हुआ कि तू क्यों मार रहा है इनको, है इनका भी तो अधिकार है। मेरे खेत में चिड़िया मरी, कौवा मरा, गरसल्ली मरी, सांप मरा, चूहा मरा, एक सुंडी को मारने के लिए, एक माइट को मारने के लिए, मैं क्यों मारूं इनको। मैंने स्प्रे मशीन बना ली, बैटरी से चलने वाली जो ग्लूकोज बहन को लगती थी, उस बहन की ग्लूकोज जो ले गए ड्रॉप ड्रॉप, और मिक्सी के फिरकी पे लगा के टेबल रोड की बैटरी में जोड़ के, ऐसी मैंने स्प्रे की मशीन बना के मैंने अपने खेतों से कौवा गरसल्ली चीटी कीट पतंगे सारे मार दिए, मैं बच गया, सांप भी मर गए। मैंने फिर सोचा हो तू क्यों मार रहा किसी को
1: जी,
0: क्या मिलेगा है, सब्जी बेचनी है मंडी में जाएगी है? मैं नहीं करूंगा काम, मैंने बंद किए साहब जी, तो बंद कर दिए, और मैं पलट गया एकदम, मैं जड़ी बूटियों खेती पे आ गया, और मैं जो भी हो गया नेचुरल हो गया। मैंने फिर जड़ी बूटियां उगानी शुरू की, जब जड़ी बूटियां उगाई तो मेरे खेत पर डीएफओ और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट के बड़े बड़े ऑफिसर और के स्टेट के कंजर्वेटर मेरे खेत में आने लग गए एकदम। देखो एक किसान ने जड़ी बूटियां उगानी शुरू कर दी, मेरे खेतों पे बड़े बड़े ऑफिसर आने लग गए, और मैं जड़ी बूटियों में अच्छा काम करने लगा। फिर मैं अजमेर पुष्कर गया राजस्थान के, वहां पर मैंने देखे बहने आंवले से लड्डू बना रहे हैं, तो उनके हाल बड़े पेनफुल होता है आंवले को कद्दूकस करना, तो किसानों के साथ में मैंने सोचा तो मशीन में बना दूंगा। जब मैं वापस आया गांव में तो मैंने डीएचओ से बोला, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से, कि भाई ये तो मशीन में बना दूंगा, आंवले को कद्दूकस करना बाएं हाथ का काम है, गाजर मूली कद्दूकस करने की मशीन बना दूं मैं। तो मैंने एक ऐसी मशीन बनाई, उन्होंने मुझे 25,000 रुपए दिए, जिससे मैं एक ऐसी मशीन बनाई जो गुलाब जल बनाए और वो आंवले कद्दूकस करे। फिर इस मशीन से मैंने जो है पूरा एलोवेरा मंगाया, उसके जूस बना के फिर हरिद्वार भेजने शुरू करे, जलंधर भेजने शुरू करे, दिल्ली भेजने शुरू करे, आंवले के लड्डू बना कर बेचने शुरू करे। इस तरह मैं पूरा फेमस हुआ और मेरे को नेशनल फाउंडेशन ने पकड़ लिया, और फिर ये मशीन जो है ना मेरी पेटेंट कराई, और जो गांव किसान है भाई, और फिर इस मशीन को

0: अफ्रीका में दूसरे कंट्री में भेजा है ये, और वहां पर इनमें टेक्नोलॉजी को भेजा, तो वहां पर लोगों को अमरीका के ट्रेनिंग दी अफ्रीका के लोगों को कि भाई आप वैल्यू एडिशन करके ऐसे मैंगो का जूस बनाओ, गुठली भी नहीं टूटेगी, जूस भी निकला, छिलका भी नहीं कटेगा। तो इसने अफ्रीका के कम से कम 17-18 कंट्रियों में मशीन जाने लग गई, और इससे जो है ना मैंने बेटी को MBA कराया, और बेटा जो है ना मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। ऐसे बदलाव आया और मुझे राष्ट्रपति ने सम्मानित किया 2013 में, 2014 में 20 दिन में राष्ट्रपति का गेस्ट रहा, और अब आज के डेट में पैडमैन फिल्म में भी मुझे लगा 2018 में, और मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बोर्ड का मेंबर बना, और पूरे देश के स्कूलों में अब मेरे बारे में किताबें पढ़ाने लगे। एक रिक्शा पोलर टू जर्नी, एक एंटरप्रेन्योर बन गया वो। मेरे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 20-22 लड़के काम कर रहे हैं, कई महिलाएं काम कर रही हैं, काफी महिलाएं, और हम ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, और हमने भी जो है ना एक्सीलेंस सेंटर भी बनाया जिसमें गांव की बहनें आए और सीखे, अलग अलग स्टेट से बहुत मतलब 20-22 हजार लोगों को हमने ट्रेनिंग दे दी है, और वो अपने काम पे खड़े हो गए हैं। इस तरह की मेरी ये जंगयात चल रही है। आज मैं उड़ीसा में हूँ, यहाँ पर भी हमने कैसे मैंगो कटिंग होगा, मैंगो तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने गाजर की कटिंग, जिंजर कटिंग, गार्लिक कटिंग, और इस तरह के बड़े अचार बनाने इन बहनों को सिखा रहे हैं। अभी मैं उड़ीसा में हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन है सर जी, वो आप मुझसे पूछिए। मुझे तो इतना पता कि आज मैं 87 कंट्री में मैं अवार्ड ले चुका हूँ, और मेरे ट्रेनिंग दिए हुए आदिवासी चाहे वो गुजरात की बहन है, वो भी 50-55 लाख रुपए सालाना कमा रही है। ऐसे फौजी रिटायर होकर के आए जो 2-2 करोड़ रुपए सालाना कमाने लग गए। ऐसे भी बहुत मतलब जेल के जो निकले हुए आदमी हैं वो भी लाखों रुपए, 20-20 लाख रुपए कमाने लग गए। तो हम जेलों में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम इधर भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि लोग आगे बढ़े, अपना वैल्यू एडिशन करें। तो इस पर हम काम कर रहे हैं
1: जी। तो ये जो आपका एक सफर है जिसमें आपके सामने एक एक समस्याएं आती गई, उसका आपने समाधान करना शुरू किया, और न केवल समाधान किया, उसमें एक नवीनता लाई, नए तरीके से उसमें जो इनोवेशन आपने लाया, वो करने के लिए साधारणतः किसी को लगेगा कि बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, साइंस का बहुत बड़ा बैकग्राउंड होना जरूरी है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ये सवाल उठते हैं। तो आपके पास तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी आपने इन सवालों का एक मुंह तोड़ जवाब दिया। आपने फिर भी कई सारे ऐसे प्रौद्योगिकी नवीनीकरण किए हैं, कई इनोवेशंस किए हैं जो कि बहुत टेक्नोलॉजिकल हैं। तो वो करने में आपने किस तरीके से किसी और की मदद ली, या कैसे आपने ही किया, इसका थोड़ा सा हमको बताइए।
0: सर जी ऐसा है, मैं अपने दम पे काम कर रहा था, अभी मैं ये कर रहा हूँ। मेरा लोगों को लोग जो है ना दूसरे कोई मेरी बात सुनता वो मेरी नकल मारने में खड़ा हो जाता कि मैं इससे पहले ये काम कर लूँ, तो मेरी आदत है लोगों को बताने की। अरे भाई मैं कर लूँ पहले, आप फिर बाद में कर लेना। तो ऐसे भी हुआ, कुछ लोगों ने ऐसे मेरे साथ में किया और धोखा भी खाया, लेकिन मैं चलता रहा और मैंने इस काम को छोड़ा नहीं। और जो मैंने सोच रखा है और मैं आज भी छोड़ नहीं रहा हूँ, मैंने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो घंटे में 200 किलो लहसुन को छील देती है, एक घंटे में कोई आटा भी गूंद देती है मशीन, कुछ टमाटो कैचअप भी बना देती है मशीन, एक घंटे में 200 किलो वो चीनी सोस भी निकालती है, वो गुलाब जल तो बनाती है लेकिन गुलाब का तेल भी निकाल देती है, वो गुलकंद तो बनाती ही है लेकिन गुलाब की टोपियां भी बना देती है, वो पकाती तो इतना है कि उसमें पके हुए चलता ही नहीं, कच्चे आम का जूस निकालेगी तो पक्के आम का भी जूस निकालेगी, एक घंटे में 200 किलो बिना बीज तोड़े, बिना छिलका तोड़े, उसे पिकल भी बनाया कटिंग करेंगे, गाजर की भी कटिंग करेगी, गाजर का हलवा बना देगी। तो इस तरह की जो मशीन है पूरे वर्ल्ड में पहली हमारे देश की मशीन है, जिससे बाहर के कंट्री के लोग भी चाह रहे हैं कि हम जड़ी बूटियों के तेल निकाल लें, हम क्रीम बनाए, शैम्पू बनाए, जेल बनाए, जैम बनाए, या हम जो है पिकल बनाए, या फिर तो ह्यूमरी तेल बनाए, है जी।
1: धर्मवीर जी, ये मशीन अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी किसान को या किसी साधारण घर की महिला को जो कि चाहते हैं कि भाई अपना छोटा मोटा कुछ व्यवसाय शुरू करें, जी, तो अगर किसी को लेना हो ये मशीन, तो कितने रुपए से या कितने खर्चे में वो लेना?
0: जो सबसे छोटी मशीन है 72,000 रुपए आज के रेट में, रेट उसका GST अलग है, सिंगल फेर बिजली में किया, वो चाहे मक्के का दूध बनाओ, चाहे उसमें दूध से खोया निकालो, चाहे उसमें बर्फी बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ, गाजर की छीलेगी वो, लहसुन की छील, गाजर की छील करके उसका हलवा बनाएगी, और इसमें चाहे ड्रैगन फ्रूट है, चाहे स्ट्रॉबेरी है, सबके जैम बनाएगी, कोल्ड ड्रिंक जूस बहुत बनाएगी, कोल्ड ड्रिंक जूस में तो बहुत ज्यादा काम कर रही है, घंटे में छोटी मशीन भी मतलब कम से कम है 16

0: ड्रिंक जूस बना देगी जो पीने के लिए, मैंगो जूस हो गया आपका, फिर ये मतलब पाइन एप्पल जूस हो गया, एप्पल जूस हो गया, क्योंकि उसमें तो हमें पानी भी डालना पड़ेगा, चीनी भी डालनी पड़ेगी। तो आप ट्रेनिंग देते हैं जी, और ये ट्रेनिंग जो है ना वो ट्रेनिंग 2 दिन की होती है जी, उसमें उस ट्रेनिंग में हम समझा देते हैं सारा। और उस ट्रेनिंग को लेकर के लोग चाहे मेहंदी, जो यहाँ जंगलों में मेहंदी खड़ी है, चाहे वो मेहंदी की पेस्ट बनाए तो इसमें बन जाएगी, मेहंदी के पत्ते ला के डालो तो पेस्ट बना देगी, चाहे इसमें जिंजर डालेंगे जिंजर की, ये जो खजूर होती है जो जंगलों में खजूर खड़ी है, ये खजूर का बीज नहीं तोड़ेगी, खजूर की पल्प निकाल देगी, चाहे इसमें करौंदा है करौंदे को भी जूस बनाएगी।
1: तो ये जो आपका ट्रेनिंग है, क्या ये ट्रेनिंग करने के लिए किसी को बहुत पढ़ा लिखा होना आवश्यक है या कितनी कितनी साक्षरता की आवश्यकता है?
0: कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ाई की, जो है ना वो तो एक समझाएंगे हम लोग, ये मशीन है, ये सूची दबेगा, ये घूमना शुरू होगी, अगर तो बीज वाले फल है या बीज वाली जड़ी बूटियां हैं उनको डालेंगे बीज नहीं टूटेंगे, बीज साबुत आ जाएंगे। अनार डाल दिया, अनार का बीज साबुत मिल गया, अमरूद डाल दिया, अमरूद का बीज साबुत डाल दिया, अमरूद की पलप से चाहे आप बर्फी बनाओ, चाहे आप उससे उसको पलप से आइसक्रीम में कन्वर्ट करो डीप फ्रिज लेकर के, सीताफल है सीताफल की पलप निकाल लो और चाहे उसकी बर्फी बनाओ, चाहे सीताफल की आप जूस बना करके बेचो, कुछ सीताफल का बीज बच गया, अनार का बीज बच गया, उनको कोहलू में निकाल करके तेल निकलवा करके उससे प्रोडक्ट बना के बेचो, वो तो महंगे बिकेंगे, सीताफल का तेल भी 25-30 रुपए बिकता है और ये अनार का तेल भी 25-30 हजार लीटर बिकता है, तो अमरूद का तेल भी 15 हजार लीटर के ऊपर बिकता है। अमरूद का हमको पलम भी मिल गया, उसे चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो हम ट्रेनिंग में बताएंगे, चाहे अमरूद का फेस पैक बनाए, चाहे अमरूद का आप साबुन बनाए, चाहे टमाटो केचप बनाए, चिली सॉस बनाए। और सर जी खजूर है आपकी, खजूर की टोफी बनाओ, ड्रैगन फ्रूट है उसकी आप जैम बनाओ, टोफियां बनाओ, या आपने जो भी खेत में उगा रखा मक्का है मक्के का दूध निकालो, हम सारा ट्रेनिंग पार्ट में रखते हैं।
1: आपका जो ये मैं कहूंगा सर्व सक्षम मशीन है आपका, ये तो एक बार में तैयार नहीं हुआ होगा, इसको तैयार करने में कितने इसके कॉपीज बने होंगे, उसमें फिर आपने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा, फिर उसमें कुछ और नया चीज जोड़ा होगा, तो ऐसे करते करते वर्तमान में जो मशीन आप इस्तेमाल करते हैं या जिसका आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं या जो अभी व्यवसाय के तौर पे लोग खरीदते हैं आपसे, उस मशीन तक पहुंचने में और जो पहली मशीन आपने सोची थी उसके बीच में कितने आपने इन मशीनों का वो अपडेट किया होगा या कितनी बार इसको वो किया?
0: डिजाइन बदले गए, डिजाइन बदले गए, काफी बदलाव आया। पहले 4 टांगों के ट्रक के ऊपर जो है ना हमने एक मशीन को मोटर को अटैच करा, नीचे आग जलाते थे, फिर हमने ट्रक को चेंज करके उसमें जो है ना नीचे हीटर लगाए, कंट्रोल टेम्परेचर करा, फिर वो फिर भी हमको मजा नहीं आया क्योंकि धोने में प्रॉब्लम होती। फिर NID मतलब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने जो है भारत सरकार से डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इन लोगों ने मेरी मदद की, NIF ने, इन्होंने मेरा नए डिजाइन बना के दिए, तो इनमें से एक डिजाइन ये है अगर ओनियन डालेंगे ब्लैक ओनियन बना देगी, ये बिस्किट भी बनाएगी, बेकिंग भी करेगी, इसमें अगर दही डाल दी मक्खन निकालेगी, मक्खन डाल दिया ये घी बनाएगी, इसमें जलेगा नहीं क्योंकि जलने का पॉइंट इसमें है नहीं, वो रोज डालेंगे रोज वाटर बनाएगी। तो बहुत कुछ हम भी सीख रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं, और इससे जो है ना ऐसे इंटीरियर ग्रामीण जो बहने सड़क पे रोड़ी तोड़ दी थी, कोई 55-60 लाख रुपए सालाना कमाने लग गई। मैं कहूंगा ऐसी बहने जो आदिवासी समाज में रहती हैं, जहाँ जंगल है, अमरूद है, लेमन ग्रास है, तुलसी है, उनके पास अनार है, जामुन है, वो अब जो है ना मतलब 5-6 लाख रुपए महीना कमाने लग गई। ऐसे तो बहुत उदाहरण है, चाहे वो सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट है, चाहे गुजरात का डेडिया पाड़ा है, चाहे हरियाणा के ऐसे किसान है के बेटे हैं जो डिफाल्टर हो गए थे, वही 55-60 लाख रुपए कवाले लग गए, वो अपने पापा को कहने लगे पापा में कवाले लग गए। ऐसे बहुत जाट लोग भी है जो अब कमाने लग गए हैं, माफ करना। इस मशीन ने मेरी तो जिंदगी बदली बदली, लेकिन दुनिया में यूरोप में वो लोग जो आइसक्रीम बनाते थे दूध की, उन्होंने फलों की जूस की एक मतलब वो कुल्फियां बना के बेचनी शुरू कर दी, वो लोग दूध से परहेज करने लग गए। तो ऐसे भी दूधिया बनाती है 10-12 तरह के, तो दूध निकालती है ये 1 घंटे में, सबसे छोटी मशीन भी 1 घंटे में 70-80 लीटर दूध बना देती है, चाहे वो इसको सोयाबीन को, चाहे मूंगफली को, चाहे बादाम को, चाहे अखरोट को, है जी, और चाहे आपके मक्के का हो, तो इस तरह

0: मक्के का दूध, मक्के की आइसक्रीम, ये तो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध हो गए अब है।
1: तो धर्मवीर जी, आप आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एक जो खोजी होता है या जो एक मैं समझता हूँ आपके जैसा व्यक्ति जिसको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का रुझान होता है और अपने नवीनतम जो भी उनके इन्वेंशंस होते हैं उनके द्वारा वो कोशिश करते रहते हैं समाज में कुछ बदलाव लाए, तो अभी आपके लिए आगे का लक्ष्य क्या है, आप क्या आगे करना चाहते हैं?
0: देखिए, मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस मशीन को प्रमोट करता रहूंगा। ये मशीन जो है ना और ज्यादा अभी वो मतलब R&D में भी चल रही है, लेकिन लोगों को करोड़ों रूपये सालाना कमाने को देने लग गई है, लेकिन अभी भी हम इससे जो है ना अभी भी इस पे काम पे लगे हैं। और मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, तो 18 कंट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। अब भगवान की दया से कहां मैंने सोचा था कि दिल्ली के फुटपाथ में सोने वाला आदमी है और एक देश के राष्ट्रपति का उसके गांव में एक सरकार ने एक पटल लगाया कि राष्ट्रपति सम्मानित गाँव है, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। और मेरे किसान भाई अगर वो वैल्यू एडिशन करेंगे उनको भी तो समाज में उनका भी नाम रोशन होगा, और इन किसानों को भी चाहिए कि वो अपनी फसल को उगा करके वैल्यू एडिशन करे। और सर जी, मैं कैसे बताऊं आपको कि भाई उनके जो है ना एक उजाला शुरू हो जाएगा। आप सूरज जानते हो, एक बारीक वो जानते हो बिंदु है, ये बिंदु कितना बड़ा जाके कितना बड़ा विस्तार लेता है, है? ये मशीन को केंद्र बिंदु मानिए। और उन किसानों को जिनको जानकारी नहीं है वो आगे बढ़े, इसमें कोई भी शरबत बनाइए आप, ऑल एनी फ्रूट, बेर का, जामुन का, ये जामुन की कैंडी हम लोग 3000 रुपए किलो बेच रहे हैं। जामुन की कैंडी यहाँ सड़कों पे सड़ती है, गाड़ियां गुजरती है जामुन को, सीताफल ऐसे फट जाते हैं। तो इनके पलब जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में, ये जिंजर को काट दिया, जिंजर का तेल निकालती है, हल्दी के पत्तों का भी तेल निकालती है ये, उससे भी हम कॉस्मेटिक में ट्रेनिंग दे रहे हैं। हल्दी के पत्ते पूरा देश वेस्ट करता है, हम तो बोल रहे हैं हल्दी के पत्तों में हल्दी से ज्यादा तेल है, सर्च कर लो पुदीने में कितना तेल है, उसकी जड़ों में तेल नहीं है पुदीने की, हल्दी हल्दी के जड़ों में तेल इतना नहीं है जितना हल्दी के पत्तों में, हम किसान वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, गाजर है, हम लोग गाजर के पत्तों को वेस्ट कर देते हैं, गाजर के तेल देख लो क्या भाव है, गाजर का सेंसल ऑयल, गाजर के पत्तों में तेल है, सारे किसान वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो बार बार
1: ये जो आपने बात कही कि हल्दी से ज्यादा तेल हल्दी के पत्तों में है, पुदीने के पत्ते में तेल है, इसके लिए तो व्यक्ति को पढ़ते रहना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हैं, नई नई रिसर्च करते रहना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा अनुभव जो अपना शेयर किया, इससे लोगों को ये बात जरूर पता चलेगी कि कहीं रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक काम मेरा सेट हो गया तो मैं उसमें ही लगा रहूं, अगर आगे बढ़ने की प्यास है, ललक है, तो आपके पास भी ज्ञान कहीं ना कहीं से आता रहेगा जिसको यूज करके आप और आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे धर्मवीर जी ने किया। और जैसे आज उन्होंने बताया, मेरे लिए भी नई बात थी दोस्तों, कि जैसे हल्दी के पत्ते में हल्दी से ज्यादा तेल है, अगर धर्मवीर जी रुक जाते, उन्होंने अध्ययन नहीं किया होता, तो कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल वो अपने काम को और अपने काम के जरिए पूरे देश को आगे बढ़ाने में नहीं लगा पाते। धर्मवीर जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि अध्ययन करते रहना चाहिए, कभी भी इस बात से सहमत नहीं हो जाना चाहिए कि मैंने तो बहुत कर लिया, अभी मुझे कुछ नहीं करना है।
0: हर किसान बहन को, हर किसान भाई को हर रोज नया अध्ययन करना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो मेरे से ज्यादा मतलब उनके पास एनर्जी है, वो मेरे से ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन वो शर्म कर रहे हैं, वो डर जाते हैं, उन्हें झिझक छोड़ देनी चाहिए और अपने प्रयोग नियंत्रण करें और अपने वैल्यूएशन करके अपने फार्म के फार्म फ्रेश उत्पाद को, चाहे वो एसेंशियल ऑयल है। देखो नीलगिरी के पत्ते कितने हैं और सफेदा, उसमें भी पत्ते में तेल है, उससे कितने प्रोडक्ट बनते हैं, दांतों के दर्द है, चरम रोग है, और है, बालों की प्रॉब्लम को आराम कवर करते हैं। ये लोग करना नहीं चाहते, शर्म वेस्ट कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, समझो भाई, समझो, अभी भी समय है, समझ लो
1: दोस्तों। धर्मवीर जी का जो जीवन है उसमें दोनों बातें एकदम तय है कि सफलता तभी होगी जब आप उसके लिए जी नहीं रहे हैं लेकिन उसके लिए जूझ रहे हैं। कई लोगों का जीवन ऐसा होता है कि केवल सफलता मिले और वो शांत होकर बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मवीर जी के जीवन से पता चलता है कि वो अपनी सफलता के द्वारा अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। उनके नाम में ही है धर्मवीर, वीरता उनका धर्म है और उन्होंने इस धर्म का पालन करते हुए कभी भी जीवन की समस्याओं से डर नहीं देखा, निडर होकर की वीरता के साथ, उनके नाम में ही है धर्मवीर, उन्होंने वीरता को ही अपना धर्म समझा और इस धर्म का पालन करते हुए जीवन के सभी

0: बैठते हैं जिससे परिवार वालों को बड़ा दुख होता है, अपने जीवन के साथ वो खेल बैठते हैं क्योंकि उनको हताशा या निराशा हाथ लगी है। लेकिन आपके भी जीवन में कई बार हताशा सामने आए, कभी आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे आपके परिवार वालों को या आपके जीवन को दुख हो, तो आप ऐसे युवा वर्ग के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि भले निराशा सामने आए, भले हार सामने आए, लेकिन उसको आगे, उसके आगे क्या है, कैसे पहुंचे उस तक के लिए, उस पहुंचने के लिए क्या मदद आप उनको आज अपने मैसेज के द्वारा देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं पूरे देश के किसानों से, किसान भाई बहनों से ठीक कहना चाहूंगा, आपके पास माइंड है, पैसा नहीं है, दूसरी बात आपके पास नेचुरल संपत्ति है, नेचुरल ग्रोइंग है, आपके पास यहाँ पर लेबर का कम रेट है, लेबर के कम रेट में हमारी मशीन और ज्यादा आपकी मदद करेगी। आप बाहरले मुल्कों में जाओगे वहां पर लेबर का बहुत रेट है, हमारे कुछ भाई बहन बाहरले मुल्कों में जाकर के लेबर करने जा रहे हैं, जहां पर उनको ये सोचते हैं कि हमको बहुत महंगा रेट मिल रहा है। क्यों ना हम अपने यहाँ देश में इतनी जमीन पड़ी है, यहाँ से ग्रो करें, फार्म फ्रेश उत्पाद बना करके हम वर्ल्ड में अपनी मोर मार के बेचे, और जो हमारा देश हमारे साथ खड़े है, हैं, हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो, हमारे देश में भी पैसा आए और हमारे जो है ना कम रेट में जो है ना उत्पाद बनेंगे और वो दूसरे मुल्कों में जाके कई गुना ज्यादा रेट में दूसरे मुल्क के लोग खरीदेंगे, चाहे हमारे देश वाले भी उन इंडिया का समझ के खरीदेंगे, लेकिन जो हमारे नेचुरल आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, जो नेचुरल ग्रो होते हैं, वो हमारे खेतों में, हमारे जंगल में होते हैं, दूसरा हम जो ग्रो करेंगे और कर रहे हैं उनको नेचुरल वैल्यूएशन करके उनको वर्ल्ड में बेचे और ज्यादा मुनाफा लें, इससे ज्यादा पैसा वर्ल्ड में हमारे घर में आएगा। जैसे मेरे साथ ही रहा, बाहरले मुल्क कई मुल्क के लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और मुझे फोन पे पता लगता है कि तेरे अकाउंट में आज इतने पैसे आ गए हैं। तो ये सभी के साथ ऐसा होना चाहिए, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा आप करो। ईमानदारी से आपको ट्रेनिंग दूंगा, जानकारी दूंगा और आपका जो सहयोग है ये एक बिंदु पूरी दुनिया को घुमाएगा। मैं आपके साथ हूँ, आपने मेरे को मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारे युवा भाइयों, आप अपना दिमाग लगाओ कि बाहर मुल्क में आपको कितने रुपए मजदूरी मिलती है वर्क करने के लिए और हमारे देश में कितनी सस्ती मजदूरी में आपको बढ़िया वैल्यूएशन करके हम अच्छी पैकेजिंग करके उसको गवर्नमेंट से एनालिसिस करवा करके अपने प्रोडक्ट को अपना ब्रांड बना के वर्ल्ड में बेचे तो हमारा देश भी मान होगा, हमारे को भी खुशी मिलेगी और आपके यहाँ बहुत लोगों को रोजगार आएगा और सभी को बढ़िया पैसा मिलेगा। बहुत धन्यवाद जी और बहुत बहुत आभार जी। और मैं कहूंगा जो बचपन का सपना आज आप लोगों ने मेरा पूरा कर लिया जी।
0: ये बात धर्मवीर जी आपके साथ, धर्मवीर जी आपके साथ बात करने के लिए एक एपिसोड काफी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है आपके साथ कई सारे एपिसोड करने चाहिए, क्योंकि आपका जीवन ही जो है एक बहुत रोचक कथा है जिसमें हर घटना पे कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। इसलिए मैं हमारे श्रोता साथियों से जरूर उम्मीद रखूंगा कि जो धर्मवीर जी ने कहा कि बाहर क्या बेहतरीन है, ये झांकने से पहले, ये देखने से पहले हमारे देश में मैं क्या कर सकता हूँ ये देखना जरूरी है। क्योंकि आज भी दोस्तों हमारे पास करने को बहुत कुछ है, हम अगर थोड़ा सा अपना समय, अपनी ताकत और अपना लगन, अपना प्यार अपने देश के प्रति लगाए तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। धर्मवीर जी के जीवन के इस सुंदर अनुभव को आप अपने दिल में संजो करके जरूर अपने दिल में रख करके आगे बढ़ते रहिएगा। और जी हाँ दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 सुनते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए मेहमान के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। जय हिंद, जय भारत।

0: अहो ऐकलत का?
1: आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
2: जी नहीं।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: स्वागत है ज्ञान चिंतन में। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपको चिंतन की एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नए टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है स्नेह और मोह, इनमें क्या अंतर है। मैं इस पर अपना चिंतन शेयर करूँगी। दोस्तों, ये स्नेह और मोह क्या एक हैं या इनमें कोई अंतर है, चलिए इस विषय

0: को जानने की कोशिश करते हैं। स्नेह माना अफेक्शन, स्नेह निस्वार्थ होता है, इसमें व्यक्ति की भलाई की कामना होती है बिना किसी स्वार्थ या प्रतिबंध के। स्नेह स्थायी और शुभ भावना वाला होता है जिसमें व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलती है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति स्नेह, गुरु का शिष्य के प्रति स्नेह या सच्चे मित्र का दूसरे मित्र के प्रति स्नेह, ये सारे उदाहरण स्नेह के हैं। मोह माना अटैचमेंट और ऑब्सेशन। मोह स्वार्थ से जुड़ा होता है, इसमें व्यक्ति किसी के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है और उसे अपने अधिकार में रखना चाहता है। मोह अस्थायी होता है और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख, क्रोध या पीड़ा उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अत्यधिक जुड़ाव होना मोह का उदाहरण है। जैसे माता पिता का अपने बच्चे को उसकी इच्छाओं के विरुद्ध रोकना या किसी व्यक्ति का प्रेम में अंधा होकर सही गलत भूल जाना, ये मोह की कुछ परिभाषाएं हैं। आज इस चिंतन के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि स्नेह प्रेम का शुद्ध रूप है जबकि मोह एक मानसिक बंधन है। यदि हम जीवन में स्नेह को अपनाएं और मोह से बचें तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और सुखद हो सकता है। तो दोस्तों, आज के चिंतन में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
1: ज्ञान चिंतन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।
2: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
3: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएटेड।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बरं घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्म कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
4: ओम शांती.
3: ओम शांती एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
4: थैंक यू सो मच.
3: ये आपकी लास्ट एपिसोड के बाद मुझे एक बहुत अच्छी लाइन मिली. मैं शेयर करना चाहूंगा एज यूजुअल. इट सेज यू कांट चेंज पीपल. वो तो आपने और कहा है कई बार. आइदर यू एक्सेप्ट हु दे आर और स्टार्ट लिविंग लाइफ विदाउट देम.
4: See, it's a very strong statement.
3: हाँ हाँ, तो भी accept हो दिया तो हम नहीं कर पा रहे हैं.
4: ये quotation ने ये clear कर दिया है कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा option नहीं है.
3: Oh.
4: है ना, दो ही option है. एक option है accept them as they are, मतलब वो जैसे हैं उनको स्वीकार करें. और स्वीकार

0: प्यार करे मतलब सारा दिन उनको देखते हुए उनके व्यवहार, उनके कर्म, उनके शब्द को, यहाँ एक इनर कमेंट्री नहीं चलनी चाहिए। स्वीकार, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, स्वीकार।
1: मजबूरन आपके साथ रहना ही है तो एक्सेप्ट करके चलना ही है, ऐसा नहीं है।
0: वो करने से मजबूरी और एक्सेप्टेंस सेम नहीं है। मजबूरी इज अ विक्टिम, एक्सेप्टेंस इज अ मास्टर।
1: एक्सेप्टेंस इज अ मास्टर,
0: एक्सेप्टेंस इज अ मास्टर ऑफ द सेल्फ।
1: एक्सेप्टेंस इज मास्टर ऑफ माई ओन सेल्फ।
0: यस, नो, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, मतलब अब आपका कोई भी कर्म मुझे नहीं हिला सकता। मास्टर
1: एंड आई डू नॉट अलाउ एनी ऑफ माई थॉट्स और माई माइंड और माई इंद्रियाज टू कंट्रोल मी एनी मोर।
0: आई बिकम अ मास्टर ना,
1: मास्टर, मैं अपनी इंद्रियों का मालिक।
0: हाँ, इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में जो हम मेडिटेशन सीखते हैं उसका नाम ही राजयोग है। स्वयं पर राज्य करना, स्वराज्य, मास्टर ऑफ द सेल्फ। आज हम औरों पर राज्य करना चाहते हैं और जीवन का लक्ष्य है स्व पर राज्य करना, स्वराज्य। सच अ कॉमन वर्ड, वी से स्वराज्य, लेकिन कौन स्व और कौन सा राज्य? स्व पर राज्य। तो अगर हम औरों को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कोई भी बात, एंड विच मीन्स कोई भी, एंड इट विल रीच टू दैट लेवल, हम पहुंचेंगे उस लेवल तक। शुरू होगा छोटी छोटी चीजों से और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम उस लेवल तक पहुंचेंगे कि कोई भी बात हमें हिलाएगी नहीं उसके बाद। सिर्फ इट्स लाइक या तो ये रास्ते जा सकते हैं या तो ये रास्ते जा सकते हैं। किसी भी रास्ते चलना शुरू कर दो तो आगे तो बढ़ते ही जाएंगे। आज हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, विच मीन्स देखी उनकी बात इरिटेट हुए, सुनी उनकी बात परेशान हुए,
1: बात क्या होंगी शक्ल देखते ही पता चला उनकी गाड़ी का दरवाजा ठक किया, दरवाजा खुला तो दिमाग में शुरू अभी आने वाले हैं।
0: ये एक जीवन जीने का तरीका है और इस पर चलेंगे तो जीवन हमेशा ऐसे ही होगी। एंड फिर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो एक आत्मा के प्रति नहीं होगी ना, क्योंकि मेरा ग्रूव वो वाला बन जाएगा, मेरा रास्ता वो वाला बन जाएगा कि हरेक के अंदर छोटी बड़ी जो बात नहीं पसंद आई
1: आदत बन जाएगी,
0: आदत बनेगी ना, आई एम ऑन दिस पाथ।
1: ये पॉइंट ढूंढने की, नेगेटिव पॉइंट ढूंढने की,
0: नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं ढूंढ रहे जब तक वो व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं कि सही है, तब तक मुझे डिस्टर्ब होना अलाउड है।
1: नेचुरली उनकी दूसरी बातें नेगेटिव ही लगेंगी ना, मुझे ये कितना गलत कर रहा है, देखो
0: ना
1: ये कब सीधा नहीं रखता है,
0: right.
1: ये राइट हैंड से खाना, झूठे हाथ से खाना खा लेता है, तो मतलब मेरे अनुसार नहीं चलने में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का भी हो लेकिन नेगेटिव तो लगता ही उनका।
0: हाँ, और विच मीन्स मैं गुलाम।
1: किसका?
0: मैं गुलाम अपने मन का, मैं गुलाम उनके संस्कारों का।
1: ये पॉइंट नहीं सोचा था मैं।
0: अभी सपोज आपने कहा कि, क्या कहा अभी?
1: मैंने कहा कि खाते खाते वही हाथ से वो बीच में से
0: खाना। इतनी वाली बात भी कि खाते खाते वो वही हाथ से बीच में खाना उठाएंगे, ठीक है। अब मैं गुलाम इस संस्कार का, क्योंकि जितनी बार जितने लोग ये कर्म करेंगे मैं डिस्टर्ब होऊंगा, तो मैं गुलाम इस संस्कार का। मतलब उस संस्कार के सामने मैं अपना राज्य खो देता हूँ तो मैं गुलाम, आई लूज माई
1: कंट्रोल
0: एंड माई पावर ना। तो जब एक के सामने दूसरा कमजोर पड़ जाता है तो वो उसका गुलाम बनेगा ना फिर। तो मैं गुलाम उस संस्कार का। अब मुझे सिर्फ एक संस्कार आज चूज कर लेते हैं, भाई यही वाला चूज कर लेते हैं, कोई भी। अभी हम बड़े पे भी नहीं जाए, देखो बड़ी बड़ी बातें किसी की, ये छोटी छोटी बातें, कोई पेन टिक टिक कर रहा है, कोई लोग ऐसे ऐसे ऐसे हाथ के साथ नकल्स कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें जो सारा दिन दिखने वाली है, जिसको हम कहते हैं आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस। हम बहुत इजीली कहते हैं आई कांट टॉलरेट दिस, मुझे नहीं अच्छा लगता ये बिल्कुल भी। मेरे नहीं अच्छा लगने से वो नहीं बदलेगा, लेकिन मैं बदल जाऊंगा।
1: छोटी छोटी बातें, मुझे सिस्टर अपने स्टाफ से भी ऐसा होता था पहले कि वहाँ रेड लाइट दिखी है ना, तो आप अभी से स्पीड स्लो कर लो ना, दिख रहा है सामने रेड है, आगे जाके तो रोक नहीं है, नहीं वहां तक सेम फुल स्पीड में जाएंगे, नजदीक जाके वहां ब्रेक मारेंगे टैक,
0: राइट।
1: तो इवन दैट इज क्या, तुमको दिखता नहीं है? तो एक ड्राइवर, दूसरा ड्राइवर, तीसरा ड्राइवर, अब यहां देखा कि आइदर यू स्टे विद देम और रन अवे।

0: की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एंड ये जो क्रिटिसिज्म की एनर्जी क्रिएट हो रही है ये सिर्फ उस टाइम नहीं हो रही जब वो इंसिडेंट हो रहा है. सपोज ये स्टाफ को ही फिर से लेते हैं कि दवा हाथ में डाली. अब दवा हमें पता है हाथ में नहीं डालनी चाहिए, हमें नॉलेज है. पहली बात तो लैक ऑफ नॉलेज उनको, हम कभी भी कोई दवाई हाथ में रख के नहीं खाएंगे, उसमें से ही निकाल के खा लेंगे या फिर हाथ पहले धोएंगे फिर खाएंगे. पहली बात उनको वो नॉलेज नहीं है, ठीक है. अब हम देख देख के उनको जब इरिटेट होते हैं, फिर आपने कहा पीछे बाद में वाइफ को भी बोलते हैं, तो ये वैसे भी इतनी टर्बुलेंट एनर्जी.
1: व्हाइल स्पीकिंग टू द वाइफ भी उसको थॉट जाती है क्या?
0: वही ना, इसीलिए तो
1: तब भी जा रही है,
0: तब भी तो जा रही है. हम उसके बारे में बात कर रहे हैं.
1: आई थॉट कि मैं अकेले में जब बैठ के उसके
0: क्यों जब बात करेंगे तो
1: इवन हम जैसे अभी मैं जब बोल रहा हूँ तभी भी जा रही है.
0: नेगेटिव सोच रहे हैं ना आप उस आत्मा के लिए. अगर आप उस आत्मा के बारे में जो सोचेंगे, सी वी ऑलवेज सो कि दो आत्माओं का एनर्जी कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है ना. वी आर ऑल नेटवर्क लाइक दैट. हम जिसके लिए जो सोचेंगे वो वाइब्रेशन रेडिएट हो गई. क्यों दूर बैठे भी रिश्ते या तो बहुत प्यारे हो सकते हैं या बिगड़ सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स हम एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं. तो हमने क्रिटिसिज्म की एनर्जी सिर्फ जब वो सिचुएशन आई तब नहीं क्रिएट की, हमने पहले भी क्रिएट की हुई है. तो उस आत्मा को हमारे से वो एनर्जी ऑलरेडी एक जैसे मिल रही है. फिर जब वो सिचुएशन आई तब तो हम थोड़ा सा इरिटेट भी हो गए, विच मीन्स हमने वीड्स पहले ज्यादा लगाए जब भी हम उसके लिए सोच रहे थे. सिर्फ उस बात के लिए नहीं, और बातों के लिए भी, जब भी उसके बारे में बात कर रहे थे, मतलब वीड्स और लगाए. फिर हमने उस समय इरिटेट भी हो गए, तो मतलब हमने जमीन को और ज्यादा कड़क कर दिया. और ये सब करने के बाद हमने उसको एक अच्छी बात बोली, पता है दवाई ऐसे नहीं खिलाते, तो वो बीज कहाँ जाएगा? वो बीज डलेगा ही नहीं, वो बीज डलेगा ही नहीं. एनर्जी, एक्सेप्टेंस, और उसमें सिर्फ सिंपल चीज पहले क्या करनी है, किसी का संस्कार मेरी मन की स्थिति को नहीं हिलाएगा. जैसे ही मेरी मन की स्थिति नहीं हिली, वीड्स हट जाएंगी, जमीन सॉफ्ट हो जाएगी, पानी डल जाएगा, अब आप बीज डालिए. सिर्फ हमारे एक्सेप्ट करने से, सिर्फ हमारे स्टेबल रहने से ये सारी चीजें हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं करना है. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. बिकॉज
1: एक्सेप्टेंस में मुझे भी ऐसे लग रहा है कि इवन बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर जनरली इफ आई स्टार्ट लविंग पीपल, तो पूरा प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा.
0: दैट ओनली लव मीन्स एक्सेप्टेंस.
1: नहीं,
0: लव मीन्स एक्सेप्टेंस
1: एक पार्ट है उसका.
0: एक्सेप्ट करे बिना आप कह नहीं सकते कि आप किसी से प्यार करते हैं.
1: अच्छा.
0: प्यार की एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हैं. दो ही चीजें हो सकती हैं.
1: नहीं, मैंने कहा इन जनरल लव द स्टाफ, लव द पीपल.
0: सो लव मींस व्हाट? सेंड देम व्हाट?
1: ओरिजिनल लविंग वाइब्रेशन लव. सेंड देम लव.
0: सेंड देम लव, व्हिच मींस यू हैव एक्सेप्टेड देम. आपने जैसे एक्सेप्ट नहीं किया किसी को, आप डिस्टर्ब हुए, लव ब्लॉक हो गया, जाएगी नहीं.
1: वेयर इज द फॉल्ट? वेयर डज इट लाई? कि एक बार मुझे एक चीज अच्छी लगी आपकी, फिर 10 चीज अच्छी लगी, फिर 11वीं पे मैं फिर चिढ़ गया.
0: हाँ.
1: एक बार मतलब वंस आई लव यू, वंस आई डोंट लव यू, आई लव यू.
0: नो, इट्स नॉट वंस आई लव यू, वंस आई डोंट लव यू. जब मैं चिढ़ गया, मेरी प्यार की एनर्जी रुक जाती है.
1: तो वेयर डज द फॉल्ट लाई? कि मैं उनके 10 अच्छे पॉइंट में एक्सेप्ट किया, 11वें में चिढ़ गया. इज इट दैट कि मैं अभी तक कच्चा हूँ?
0: 10 उनकी बातें वैसी थी जो मुझे अच्छी लगती हैं, एक उनकी बात वो थी जो मुझे सही नहीं लगती.
1: हाँ, लेकिन द गोल आई वॉन्ट टू रीच, जिस सड़क पे मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ अभी मेरी कमजोरी है ना. वो
0: ये हमारी ही कमजोरी. हाँ. है ना, दूसरे की जो है संस्कार वो तो दूसरा वर्क करेगा उसमें. मुझे अपनी प्यार की एनर्जी को कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग रखना है.
1: Constantly, I guess this is the right word.
0: Right?
1: जब वो कॉन्स्टेंट नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं थी.
0: हाँ.
1: तो फिर स्टिल दैट मीन्स वहाँ अभी मैं कच्चा हूँ.
0: इट्स लाइक अगर हम फिजिकली देखें, मुझे अपनी हेल्थ को कॉन्स्टेंटली अच्छा रखना है. दस दिन अच्छी, फिर एक दिन बीमार, फिर चार दिन अच्छी, फिर एक दिन बीमार. मुझे ऐसे नहीं करना है. आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई सेल्फ. तो एक बार मुझे दिखा कि मेरी तबीयत किन चीजों से खराब हो रही है, फिर मैं बैकवर्ड जाके उन चीजों को रेक्टिफाई करूं. जैसे कुछ लोगों को पता होता है कि ये पर्टिकुलर चीज खाने से मेरी तबीयत खराब होती है. ठीक है, किसी का खट्टा खाने से, किसी का तीखा खाने से, किसी को

0: रात को लेट खाने से, किसी को कम नींद से, वी नो आर पैटर्न्स ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन कई बार क्या होता है, पता होते हुए भी मालूम भी है इसके बाद तबीयत खराब होगी, फिर भी उस समय वो चीज सामने आ गई, खा लिया. दिस इज अनअवेयर, अनइंटेलिजेंट.
1: खा लिया और पी लिया.
0: सी, नॉलेज जब तक नहीं थी, पहले हमें नॉलेज नहीं थी. जैसे एलर्जी हो जाती है किसी चीज के खाने की, तो पहले हमें नॉलेज नहीं होती कि इस चीज की मुझे एलर्जी है, वी डोंट नो. तो हम खाते जाते हैं बीमार होते जाते हैं, खाते जाते हैं बीमार, फिर हमें थोड़े दिन बाद पता चल जाता है इस चीज की मुझे एलर्जी है, उसके बाद भी खाना, दैट्स माई चॉइस नाउ. तो सी, अभी हमें पता नहीं था पहले कि किन किन चीजों से मेरी पावर और खुशी और प्यार सब खत्म होता जा रहा है. क्यों मैं इतना सब कुछ अच्छा होते हुए, अच्छा पढ़ लिख के, अच्छा बिजनेस करके, अच्छा परिवार होके, सब कुछ होके, मैं फिर क्यों बोलता हूँ मैं खाली खाली हूँ. हमें नॉलेज नहीं थी, फिर हमें नॉलेज मिलती है कि ये देखो, ये छोटी छोटी छोटी छोटी चीजें हम सारा, छोटी छोटी, बड़ी वाली भी नहीं, छोटी छोटी छोटी छोटी हम चीजें सारा दिन कर रहे हैं, इससे मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है. तो टुडे नाउ अगेन स्टार्ट, कि आज से ये वाली चीज मैंने नहीं करनी, इससे मेरी शक्ति कम होती है. वो स्टाफ वो बच्चे को दवाई दे रही है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे कई कई कई कई गुना गड़बड़ मेरे अंदर हो गई उस सीन को देख के. फिर मेरे लिए तो कोई दवाई भी नहीं होगी उसके बाद.
1: वो छोटा मोटा बैक्टीरिया जो बच्चे के पेट में चला जाता था, वो तो उसको, उसका इम्यून सिस्टम उसको ठीक भी कर
0: देगा,
1: लेकिन मेरा तो परमानेंट मार्क है.
0: This is very important. And ये सारा दिन की चीजों में देखो, अब वापस वो गाड़ी को भी देख लो जो रेड सिग्नल पे फास्ट जाती है. वो जाती तो थोड़ा नुकसान किस चीज का होता, गाड़ी का होता, थोड़ा फ्यूल कंजम्पशन का होता. जनरली सारा दिन में हम देखेंगे ना, तो बाहर के नुकसान की वजह से हम अंदर अपना कितना नुकसान करते हैं कि ये क्यों किया, ये क्यों किया. विच इज गुड, वी विल टेक केयर ऑफ इट. लाइट क्यों ऑन छोड़ दी, हाँ तो बोलो ना, लाइट ऑफ कर दो प्यार से.
1: बंद निकले गीजर ही नहीं बंद किया,
0: बंद
1: कभी करते ही नहीं है.
0: तो वी वॉन्ट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, वी वॉन्ट टू सेव मनी, वी वॉन्ट टू सेव रिसोर्सेज, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डैमेजिंग आवर सेल्फ. तो फिर ऐसी सेविंग का क्या फायदा होगा,
1: इधर डबल लॉस है.
0: डबल लॉस नहीं है, ये इरिपेरेबल लॉस है. कितना नुकसान हो गया, सेहत पे असर हो गया, उसके सामने गीजर और बिजली और पेट्रोल और ये व्हाट इज इट, नथिंग. सो दिस वी हैव टू ऑलवेज सी कि किस चीज को बचाने के लिए किस चीज का नुकसान हो रहा है. तो पहले अपने को बचाएंगे, फिर उन चीजों को बचाएंगे. That is something which we will have to put it on our priority list. Ki we are going to start accepting small things first.
1: This was a wonderful sister. Ek chota sa meditation kar le.
0: Theek hai. Aaj hum meditation mein apne aap ko prepare karte hain koi choti aadaton ko accept karne ke liye. To apne samne koi ek atma ko lekar aaye.
1: Okay.
0: Aur uski koi ek aadat, zyada nahi lamba karna hai. सिर्फ एक आत्मा, एनी वन पर्सन क्लोज टू यू, जिसकी आदत को आपको कई बार देखना है दिन के अंदर. तो ब्रिंग बिफोर योर सेल्फ वन पर्सन एंड वन हैबिट ऑफ दैट वन पर्सन, जो हम कहते थे ये मुझे इरिटेट करती है, एंड देन लेट्स मेडिटेट फॉर दैट. सिट बैक. मैं शक्तिशाली आत्मा हो, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ मास्टर ओवर माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड संस्कार. मैं अपना राजा हूं, किसी की छोटी छोटी आदत मुझे अपने राज्य से हिला नहीं सकती. लेकर आए उनको अपने सामने, जिनकी कोई आदतें आज तक डिस्टर्ब किया करती थी. देखे उनको

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

पास और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 5वें अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं गीत माधुरी। यह वह माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण के गीतों की मधुरता ने संपूर्ण वृंदावन को भक्ति और प्रेम से भर दिया। कृष्ण के गीत केवल संगीत नहीं थे, वे आत्मा को स्पर्श करने वाले दिव्य संदेश थे। उनकी वाणी में प्रेम था, करुणा थी और भक्ति का अमृत था। जब वे गाते थे तो गोपियाँ, ग्वाल बाल, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष और नदियाँ भी उस मधुरता में डूब जाते थे। यही है गीत माधुरी, जहाँ गीत केवल सुर और शब्द नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन बन जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत माधुरी का गीत।

तो श्रोताओं, श्री कृष्ण केवल बांसुरी वादक नहीं थे, वे अद्भुत गायक भी थे। अनेक गीतों में प्रेम, करुणा और भक्ति की गहराई थी। जब वे गाते थे तो वृंदावन की गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती, गायें उनके स्वर पर झूम उठती और संपूर्ण प्रकृति उस मधुरता में डूब जाती। यही है गीत माधुरी, वह कला जिसमें गीत केवल सुर और शब्द नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। कृष्ण के गीत हमें सिखाते हैं कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का अमृत है जो हर हृदय की अलौकिक करता है। तो दोस्तों, सुनते हैं गीत माधुरी का दूसरा और प्यारा सुर।

तो श्रोताओ, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण गाते थे तो हर जीव को लगता था कि यह गीत केवल उसके लिए है। गोपियाँ मन से मुक्त हो जाती और राधा तो उनके गीतों में इतनी डूब जाती थी कि समय और संसार का बहानी भूल जाती। कृष्ण के गीतों ने वृंदावन को केंद्र बना दिया। ये लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर का स्वर आत्मा को व्यक्तिगत रूप से छूता है। उनके गीत केवल ध्वनि नहीं थे बल्कि प्रेम और भक्ति का अमृत थे जो हर हृदय को अलोकित कर देते थे। यही है गीत माधुरी, वह कला जिसमें संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। कृष्ण का हर गीत हमें ये अनुभव करता है कि ईश्वर का प्रेम सर्वव्यापी है और हर जीव उनके अलिंगन में शांति और आनंद पाता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तो सुनते हैं एक सुंदर प्यारा गीत।

तो श्रोता गीत माधुरी हमें ये सिखाती है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। जब हम प्रेम और भक्ति से गाते हैं तो वह गीत सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। कृष्णा का गीत हमें यह संदेश देता है कि सच्चा संगीत वही है जो हृदय से निकलकर आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके गीतों में प्रेम की गहराई, करुणा की मधुरता और भक्ति का अमृत था। यही कारण है कि वृंदावन की हर ध्वनि, हर जीव और संपूर्ण प्रकृति उनके स्वर में डूबकर दिव्य आनंद का अनुभव करती थी। यही है गीत माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल कला नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग बनकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत। प्रभु

इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम घर

तो श्रोताओ, श्रीमद् भागवत में कहा गया है गायंती देवाय कीर्तन सव। इस श्लोक का भावार्थ है कि देवता भी श्री कृष्ण के कीर्तन का गान करते थे। यह हमें बताता है कि ईश्वर का गीत केवल ध्वनि नहीं है बल्कि भक्ति और प्रेम का दिव्य संदेश है। कृष्ण का कीर्तन हमें यह अनुभव करता है कि जब गीत भक्ति से गाया जाता है तो वह केवल मन को आनंदित नहीं करता बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यही कारण है कि उनके गीतों में देवता भी रमन करते हैं और संपूर्ण सृष्टि उस मधुरता में डूब जाती है। यही है गीत माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल कला नहीं बल्कि भक्ति का अमृत बनकर

0: तो श्रोताओ, यह थी पांचवी कला गीत माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि संगीत और गीत ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब गीत प्रेम और भक्ति से गाया जाता है तो वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। तो दोस्तों, अब हमारी श्रृंखला का अगला अध्याय होगा नृत्य माधुरी, यानी श्री कृष्ण के नृत्य की मधुरता। वह नृत्य जिसमें आनंद है, भक्ति है और जीवन को उत्सव बना देने वाली शक्ति है। तो श्रोताओ, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण का नृत्य केवल कला नहीं बल्कि उत्सव है जो हर हृदय को दिव्य आनंद से भर देता है। तो दोस्तों, सुनने ना भूले रेडियो बुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर. मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं रेडियो प्रोग्राम. तो आइए आज के इस शो में हम लोग के अक्षर वाले बहुत ही खूबसूरत गाने सुनेंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोग के अक्षर के गाने सुनकर बहुत खुश भी हो रहे होंगे, क्योंकि के अक्षर के जो खूबसूरत गाने हैं वो पूरे एपिसोड में, पिछले भी एपिसोड में हमने सुनाया था और आज के इस एपिसोड में भी आप के अक्षर वाले गाने जरूर सुनेंगे. कार्यक्रम की शुरुआत में आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं सुनाने जा रहा हूँ. मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, किशोर दा का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत, तीन देविया इस एल्बम से. जी हाँ, आप समझ गए होंगे कौन सा गाना ये. ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत. चलिए मैं गाने लग जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा. आपको गाना सुनाते हैं. कहते हैं सांसों के सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम. सांसों के सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम. जीने के बावजूद भी मर जाते हैं कुछ लोग. आप सुना है रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर. खुश रहो, खुशियां बांटो.

भी है जिसका नाम है देवदत्त और वो दुकान में संगीत वाद्य यंत्र बेचने का बहुत ही सिंपल काम करता है। लेकिन समय के साथ साथ हालात कुछ अच्छे बदल जाते हैं। उसकी लिखने की कला जो है रंग लाती है। उसकी एक छोटी सी आदत थी कविता लिखने की और ये उसके बॉस को बहुत पसंद आता है और फिर बात कुछ और ही बन जाता है। देखते देखते व्यक्ति जो है कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ये चीजें इसमें बताई गई है और इसमें तीन हीरोइन है जिसके बीच में क्लाइमेक्स लव स्टोरी को भी दिखाया गया है। कलाकार थे देवानंद नंदा, सिमी गारिवाल और कल्पना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक और खूबसूरत गीत मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। कैफी इरफानी का लिखा ये गीत है, मुकेश साहब का गाया, किसे याद रखूं किसे भूल जाओ। कभी कभी ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं। आग लगाना मेरी फितरत में नहीं है, मेरी सादगी से लोग जले तो मेरा क्या। जी हाँ, राजेश एक व्यक्ति है जिसके ऊपर ये पिक्चराइज किया गया था फिल्म अनुराग, जो एक ही शर्त पर गरीब नेत्रहीन लड़की के साथ उसकी शादी के लिए सहमत होता है। उसकी दृष्टि एक सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन सर्जरी के लिए लड़की को एक दृष्टिदाता की भी जरूरत पड़ती है। फिर क्लाइमेक्स वहीं पर है। तो आइए इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए।

जी हाँ, अभी आपने सुना बहुत ही खूबसूरत गीत राजेश खन्ना, अशोक कुमार, मौसमी चट्टान जी और विनोद मेहरा पर पिक्चर आइज किया गया था। ये खूबसूरत गीत अनुराग 1965 का आपने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फरिश्ते ही होंगे जिनका हुआ इश्क मुकम्मल, इंसान

को तो हमने सिर्फ बर्बाद होते देखा है। जी हाँ, ये आगे बढ़ते हैं। 1959 का एक खूबसूरत गीत मुझे याद आ रहा है जिसका नाम है अनारी। अनारी इस फिल्म का ये गीत है जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है, मुकेश जी ने गाया है, शंकर जयकिशन का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए, किसी की मुस्कुराहटों पे। जी हाँ, एक ईमानदार व्यक्ति राज खुद को मुसीबत में पाता है जब उस पर उसकी मालकिन को मारने का आरोप लगता है जिसकी मृत्यु जहर से होती है। पुलिस उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आता है और गिरफ्तार करती है। उसके बाद फिर उसकी रिहाई के लिए काफी जो है मशक्कत करनी पड़ती है। हीरोइन हीरो का साथ देती है, इस तरह से ये बताया है। राज कपूर, नूतन, ललिता पवार, मोतीलाल और शोभा कोटे पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, शंकर जयकिशन साहब के संगीत से सजा ये गीत अभी आपके लिए।

तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, कश्मीर की कली। बस यही सोचकर कोई सफाई नहीं दी हमने कि इल्जाम भले ही झूठे हो पर लगाए तो तुमने। ऐसे बिहारी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया, ओपी नैयर का संगीत, किसी न किसी से कभी न कभी। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। एक और खूबसूरत गीत मुझे याद आ रहा है 1967 का, और ये गाना साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था, महेंद्र कपूर ने गाया था, रवि साहब ने संगीत दिया था। फिल्म हमराज। इस फिल्म में एक मंच अभिनेता कुमार अपनी पत्नी पर संदेह करता है, जो अजीब तरह से बर्ताव करना शुरू करती है। हालत मोड़ लेते हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन्हें समझ में आता है कि ये सिचुएशन क्या थी। तो एक सस्पेंस फिल्म है, सुनील दत्त, राजकुमार, विम्मी, मुमताज और सारिका पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म हमराज। इसी का एक बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। तेरे शहर के कारीगर बड़े अजीब है ए दिल, कांच की मरम्मत करते हैं पत्थर के औजारों से।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, पता नहीं तू रूठी थी या मैं रूठा था, पर साथ हमारा बस जरा सी बात पर छूटा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म 1953 में आई थी पतीता, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है निर्मल, राधा के साथ अपनी शादी की सभी व्यवस्था करता है, लेकिन राधा अचानक भाग जाती है। बाद में निर्मल राधा को बच्चे के साथ मस्त राम के घर निवास करते हुए पाता है और राधा वो बच्चा खुद का होने का दावा भी करते हैं। तो इस तरह से ये फिल्म में ये एक ट्रेजेडी बताई गई है। तो आइए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है इस फिल्म में और इस फिल्म के कलाकार है देवानंद, ललिता पवार, उषा किरण और सीएस दुबे। शैलेंद्र साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

कुछ नहीं था मेरे पास खोने को, जब से मिले हो तुम डर गया हूं मैं। जी हाँ, 1955 में एक और फिल्म आई थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसका नाम ही अच्छा है आजाद। जी हाँ, एक अमीर आदमी की कहानी इसमें बताई गई है। आजाद कुछ डाकुओं से अपनी हीरोइन शोभा को बचाता है, तब वह उससे शादी करने का फैसला करती और समय रहते रहते हालत बदल जाते हैं। जब शोभा के परिवार को पता चलता है कि आजाद खुद स्वयं एक लुटेरा है तो यहाँ पर फिल्म का सस्पेंस बताया गया है। दिलीप कुमार, मीना कुमारी, प्राण, ओम प्रकाश और शम्मी पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म है जिसका नाम आजाद। और इस फिल्म का एक गीत है जिसे राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है और श्री रामचंद्र ने इसे संगीत से सजाया है। तो आइए ये गीत अभी आपके लिए। कितना हसीन है मौसम, कितना हसी सफर है,

इतना रोई वो मेरे कब्र पे मुझे जगाने के लिए, मैं मरता ही क्यों अगर वो थोड़ा रो देती। 1969 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तलाश। ये एक फिल्म है जिसमें एक युवक की कहानी बताई गई है। एक महत्वाकांक्षी युवक है, अपनी विधवा माँ के साथ रहता है। वो जहाँ काम करता है जल्दी ही वहाँ पर उसे भागीदार बनने का मौका मिलता है। बलराज सहानी, राजेंद्र कुमार और शर्मिला टैगोर पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म तलाश 1969 में जो रिलीज हुई थी। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा ये गाना आपके लिए अभी

चलो माना तुम्हारी आदत है तड़पाना, मगर जरा सोचो अगर कोई मर गया तो। ये आगे बढ़ते हैं। 1958 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लाजवंती। जी हाँ, इस फिल्म में एक हीरोइन की कहानी को बताया गया है, कविता नाम की, और उस पर उसके पति द्वारा बेवफाई का आरोप लगाया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में कविता का जो पति है उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है और उसे उसके बच्चे से भी अलग करता है। नरगिस, बलराज सहानी, कुमार नाज और लीला मिश्रा पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म जिसका नाम है लाजवंती। इस फिल्म का एक गाना है जो मदरू सुल्तानपुरी साहब का ही लिखा, आशा भोसले जी का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत।

मैंने रंग दिया हर पन्ना तेरे नाम से, मेरी किताबों से पूछ इश्क किसे कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म मैं चुप रहूंगी, जो 1962 में रिलीज हुई थी, और इसमें एक गायत्री नाम की लड़की की कहानी को बताया गया है। एक गरीब मजदूर की बेटी है और एक अमीर व्यापारी के लड़के के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन संबंध बिगड़ते हैं और

से अपने बच्चे के साथ गर्भवती छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की ये कहानी इस फिल्म में बताई गई है। मीना कुमारी, सुनिंदर और हेलन पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म। इसमें एक गाना है, कोई बता दे दिल है जहां, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, लता मंगेशकर और रफी साहब का गाया ये खूबसूरत नगमा। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणेशा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चलन से लो मैं चमन को चला वीरन से क्षमा है कब से जुदा परवन से अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया तो बाहर जाओ कर क्या, यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: पड़ोसी, लेखिका सुधापुर, पात्र परिचय यश, सैंडी, पंकज, वेदांत, दृष्टि, उन्नति, आदित्य प्रकाश, आदित्य।
3: आज तो हम सब ने जम के डिस्कशन की।
4: हाँ हाँ, पढ़ाई की क्लास कम और डिबेट की क्लास ज्यादा लग रही थी।
5: ये हमारे स्कूल में शाम को जो एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुई है ना, काफी फायदा है इससे।
6: एक तो हम सबको एक बार फिर से इकट्ठे होने का मौका मिलता है और टीचर के सामने सामने सारा होमवर्क भी हो जाता है।
7: अच्छा है ना, मुझे तो किसी भी काम में कोई अड़चन आए तो तभी की तभी पूछ लेता हूँ।
8: कई बार तो मिस हमें ही आपस में डिस्कशन करके परेशानी का हल ढूंढने को कह देती है।
4: इससे पता है एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके पता चलते हैं।
3: कई बार तो खुद को ही हैरानी होती है कि हमने किसी बात को उस एंगल से देखा क्यों नहीं।
2: पल में ही सब प्रॉब्लम सोल्व जाती, ये सिस्टम हर स्कूल में हो जाए तो अच्छा है।
3: पर

0: तो मजा ही आ गया। कोई नए सर आए थे?
1: जैसे ही सर ने लेक्चर देना शुरू किया, मैंने डिस्कशन शुरू कर दी।
2: ओए, मैं क्या कहता हूँ, हर बार जब किसी बोरिंग टॉपिक से बचना हो तो डिस्कशन शुरू कर देना चाहिए।
1: हाँ हाँ, टाइम कैसे बीता पता ही न चला। बात शुरू कैसे हुई थी याद है?
3: बात शुरू हुई थी भारत में व्यापार से, उन्नति से।
4: और पहुँची कहाँ?
5: भारत की विदेश नीति तक।
2: पर अब पता है ना किस दुविधा में पड़ गए हैं?
0: हाँ पता है।
4: सर ने कहा है एक ऐसा रोल प्ले करना है जिसमें हम क्लास में ही एक प्रकार के ग्रुप डिस्कशन करेंगे।
0: हाँ, पत्रकारों की तरह। हाँ, टॉपिक होगा भारत की विदेश नीति।
1: हाँ, उन्होंने कहा है कि दो टीमें बनेंगी और वो अपने अपने नजरिया रखेंगी।
2: चलो अभी टाइम है, हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं।
3: पर कैसे, पहले नेट से जानकारी तो इकट्ठी करें।
4: वो तो कर ही लेंगे, मैं तो ये सोचने को कह रहा हूँ कि कैसे ये सब इन्फॉर्मेशन मिलाकर एक प्रोग्राम के रूप में देंगे, मतलब डिस्कशन कैसे दिखाएंगे, कौन क्या बोलेगा।
1: यही तो होमवर्क दिया है सर ने, वो भी कुछ कम नहीं है।
3: कह रहे थे कल ही हम सबसे सुनेंगे हम क्या क्या जानते हैं अपने देश की विदेश पॉलिसी के बारे में।
4: चलो चलो चर्चा शुरू करो, अभी जो जो जानते हैं ऐसा ही बोलते हैं।
6: और बीच बीच में ये कंप्यूटर भैया तो है ही।
0: ये कंप्यूटर तुमने नया लिया है क्या?
7: नहीं, हमारे पड़ोस में एक अंकल है, मुझसे बहुत प्यार करते, बोले कल शाम की क्लास के लिए ये जाकर अपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकते।
0: हाँ अच्छी बनाई थी तुमने, भारतीय राष्ट्रीय जल पशु पर द फ्रेश वाटर डॉल्फिन।
2: हाँ, ये गंगा नदी में अधिकतर पाई जाती है, पर तुमने बहुत अच्छी तरह से दिखाया कि कैसे गंगा के मैले होने से यह विलुप्त होने के कगार पर है।
7: थैंक्स। जैसा कि इसका नाम है, यह साफ ताजे पानी में रह सकती है और अब इसकी संख्या भी बहुत कम हो गई है।
1: पर असली थैंक्स तो उन अंकल का है जिन्होंने अपना कंप्यूटर देकर तुम्हें क्लास में सब दिखाने का मौका दिया।
7: हाँ ये तो है, ये अंकल सबकी मदद करते, सब इनका बहुत आदर करते हैं।
0: और वो देखो दीदी भी आ रही है।
6: क्या बातें चल रही हैं?
7: पूछो मत दीदी।
1: दीदी हमें न कल एक रोल प्ले।
4: मैं बताती हूँ दीदी।
3: नहीं पता है हमारे सन ने हमें क्या काम दिया है?
2: पहले आज क्या दिखाया सबको? ओहो आगे क्यों आ रहे हो?
4: मैं आ रहा हूँ, तुम पहले आगे आए थे। दीदी देखो मैं बताता हूँ।
6: दीदी मैं। ठहरो ठहरो, एक एक करके आओ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो।
0: दीदी हमें अपनी शाम की एक्स्ट्रा क्लास के लिए हमारे देश की विदेश नीति पर चर्चा करनी है, जरा मदद कर दो, इसमें क्या क्या आता है?
1: देखो मैं बताता हूँ, जितना मुझे पता है आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति तो इस बात पर केंद्रित है कि अपने सब पड़ोसियों से आपसी संबंध किस प्रकार सुधारे जाए, है ना दीदी?
3: अभी पता चल जाएगा, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है तुम्हें?
4: चलो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास आजकल ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए।
2: रेडियो,
6: टेलीविजन,
7: अखबारें और
5: दीदी।
1: और सबसे आगे इंटरनेट।
6: क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम लोग, विदेशी हमारे पड़ोसी ही तो होते हैं। देश के लेवल की बात करने से पहले ये तो बताओ कि तुम अपने घर के पास रहने वाले लोगों से कैसा व्यवहार करते हो?
0: बहुत अच्छा,
4: बहुत अच्छा।
1: हाँ हम हमेशा उनकी मदद करते हैं।
0: मम्मी जब भी कुछ अच्छा बनाती हैं उनके घर जरूर भेजती हैं।
2: एक बार मेरा इम्तिहान था, अगले दिन लाइट ही चली गई, हमारा इन्वर्टर भी खराब था, तो हमारे पड़ोसियों ने मुझे अपने घर आकर पढ़ने को कहा था। सबने एक कमरे को मेरे लिए खाली कर दिया था, खुद छोटी सी जगह में अपने घर के काम किए थे।
1: कितने अच्छे हैं वो।
2: हाँ मम्मी कहती है मुश्किल पड़ने पर रिश्तेदार तो बाद में आएंगे, सबसे पहले तो पड़ोसी ही काम आएंगे।
3: बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी मम्मी। एक बार जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी और पापा टूर पर थे, तो पास वाले अंकल आंटी ही मेरी मम्मी के साथ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे।
6: यानी हमारे पड़ोसी एक प्रकार से हमारा परिवार ही तो हुए।
2: बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि उनसे हमारा दोस्ती का नाता होता है जो सबसे मजेदार होता है।
1: उस दिन हमारे ब्लॉक के सब परिवार पिकनिक मनाने गए, बहुत मजा आया।
0: सबसे ज्यादा मजा तो तरह तरह के खाने खाने में आता है, सबका एक ही चीज को बनाने का तरीका फर्क होता है।
6: यानी अनेकता में एकता। हाँ हाँ, पर ये तो एक्टिव तरीके हुए पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के। अब ये बताओ हम और

0: किन तरीकों से उनकी मदद कर सकते हैं?
1: मतलब
0: क्या न करके उनकी मदद कर सकते हैं?
1: मैं बताऊं, ज्यादा ऊंचा म्यूजिक न बजाकर।
0: हाँ, ये तो ठीक है। हो सकता है कोई पड़ोस में बीमार हो या किसी का इम्तिहान हो और उन्हें हमारे म्यूजिक से परेशानी हो।
2: एक और बात, इससे नॉइस पोल्यूशन भी कम होगा।
0: और बताओ,
3: अपने घर के बाहर साफ सफाई रखकर।
0: अगर सब ऐसे ही सोचें तो मोहल्ले भी साफ हो जाएंगे और सब पड़ोसी भी खुश रहेंगे।
4: जो भी सार्वजनिक साधन है, जैसे पार्क या बस स्टैंड या पीने के पानी का नल या लाइब्रेरी या और कोई सुविधा, सबको उसका ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, ये समझकर कि औरों को भी उसका प्रयोग करना है।
5: दीदी बस, अब पड़ोसियों की बहुत बातें हो गई, आप तो इधर आ जाओ बस, आज तो हम सब अच्छे फंसे हुए हैं।
2: हाँ, घर के पास के पड़ोसियों की बात बाद में करेंगे, पहले देश के पड़ोसियों की बात बताओ। बहुत काम है और हमारे पास है ये शाम भर का टाइम और ये कंप्यूटर लैपटॉप।
0: फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो, कोई भी काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कोई भी रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, शुरू कहाँ से होता है?
6: पहले कदम से।
7: तो चलो लेते हैं हम सब अपना पहला कदम।
0: हाँ, साथ के साथ नोट्स भी तैयार कर लेते हैं, फिर रोल फिक्स कर लेंगे बाद में।
4: काम इतना ज्यादा है कि कदम जैसे रुक से रहे हैं।
3: तो आओ मिलके गाना गाते हैं।

0: बिल्कुल सही, पर दीदी पहले आप ही शुरू करो ना, कुछ बताओ तो सही किस दिशा में चलें।
1: देखो, अच्छे संबंधों की बात की जाए तो एक सशक्त विदेशी नीति अब हमारे देश का ध्येय है।
2: मतलब गोल है?
1: हाँ, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश का ध्यान व्यापार पर अधिक केंद्रित होना चाहिए बजाय राजनीतिक या भूमि संबंधित प्रस्तावों के।
2: तभी तो क्लास में टॉपिक व्यापार से विदेश पॉलिसी तक पहुंच गया।
1: हमारे प्रधानमंत्री की विदेश पॉलिसी के मुख्य बिंदु हैं पड़ोसियों से अच्छे संबंध। जानते हो क्यों?
0: जिससे सब देशों में शांति और अमन हो,
2: और ये शांति और अमन उनकी उन्नति के कार्यक्रम में भी सहायक होगी।
3: दीदी, पापा बता रहे थे सभी महत्वपूर्ण विश्व में नेताओं ने हमारे देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में रुचि दिखाई है।
1: हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, पर वो इसलिए क्योंकि भारत में उन्हें व्यापार की और अच्छे बाजारों की झलक दिखी है।
0: हाँ, वो तो है।
4: अमेरिका के जॉन कैरी ने तो भारत आने से पहले ही भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व की बात करते हुए हमारे प्रधानमंत्री के स्लोगन सबका साथ सबका विकास का प्रयोग किया।
5: और दूसरी तरफ अगर भारत और जापान के संबंध की बात की जाए तो ये हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं।
0: जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।
6: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

0: भाई ईस्ट हो या वेस्ट,
1: इंडिया इज द बेस्ट।
2: चलो चलो, बहुत सी जानकारी इकट्ठी करनी है और रोल बांटने हैं।
3: कल की तैयारी, अभी तो बहुत काम है। अब देखते हैं सर हमें क्या क्या कमेंट्स देते हैं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वो ही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। स्वागत है आपका हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 5वें अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसे कहते हैं गीत माधुरी। यह वह माधुरी है जिसमें श्री कृष्ण के गीतों की मधुरता ने संपूर्ण वृंदावन को भक्ति और प्रेम से भर दिया। कृष्ण के गीत केवल संगीत नहीं थे, वे आत्मा को स्पर्श करने वाले दिव्य संदेश थे। उनकी वाणी में प्रेम था, करुणा थी और भक्ति का अमृत था। जब वे गाते थे तो गोपियाँ, ग्वाल बाल, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष और नदियाँ भी उस मधुरता में डूब जाते थे। यही है गीत माधुरी, जहाँ गीत केवल सुर और शब्द नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन बन जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत माधुरी का गीत।

तो श्रोताओं, श्री कृष्ण केवल बांसुरी वादक नहीं थे, वे अद्भुत गायक भी थे। अनेक गीतों में प्रेम, करुणा और भक्ति की गहराई थी। जब वे गाते थे तो वृंदावन की गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती, गाय उनके स्वर पर झूम उठती और संपूर्ण प्रकृति उस मधुरता में डूब जाती। यही है गीत माधुरी, वह कला जिसमें गीत केवल सुर और शब्द नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। कृष्ण के गीत हमें सिखाते हैं कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का अमृत है जो हर हृदय की आलोकित करता है। तो दोस्तों, सुनते हैं गीत माधुरी का दूसरा और प्यारा सुर।

तो श्रोता हो, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण गाते थे तो हर जीव को लगता था कि यह गीत केवल उसके लिए है। गोपियाँ मंत्र मुक्त हो जाती और राधा तो उनके गीतों में इतनी डूब जाती थी कि समय और संसार का बहाने भूल जाती। कृष्ण के गीतों ने वृंदावन को केंद्र बना दिया। ये लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर का स्वर आत्मा को व्यक्तिगत रूप से छूता है। उनके गीत केवल ध्वनि नहीं थे बल्कि प्रेम और भक्ति का अमृत थे जो हर हृदय को अलोकित कर देते थे। यही है गीत माधुरी, वह कला जिसमें संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य साधन बन जाता है। कृष्ण का हर गीत हमें ये अनुभव करता है कि ईश्वर का प्रेम सर्वव्यापी है और हर जीव उनके आलिंगन में शांति और आनंद पाता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। तो सुनते हैं एक सुंदर प्यारा गीत।

तो श्रोताओं, गीत माधुरी हमें ये सिखाती है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। जब हम प्रेम और भक्ति से गाते हैं तो वह गीत सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। कृष्ण का गीत हमें यह संदेश देता है कि सच्चा संगीत वही है जो हृदय से निकलकर आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके गीतों में प्रेम की गहराई, करुणा की मधुरता और भक्ति का अमृत था। यही का

है कि वृंदावन की हर ध्वनि, हर जीव और संपूर्ण प्रकृति उनके स्वर में डूबकर दिव्य आनंद का अनुभव करती थी। यही है गीत माधुरी का सार, जहाँ संगीत केवल कला नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग बनकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत। प्रभु

इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

की अंगड़ाई सरे बजन बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बही रुसवाई। आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्म आई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

तौबा तौबा जब जुल्फ तेरी लहराती है यूं चाल चलो न मतवाली।

जहाँ से हलके आई हो, धूप की वो टकसाल कहाँ है, जहाँ से हलके आई हो, है

हाथ पे तुम रूठा न करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो। वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की। ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक। फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी।

कहीं का ना छोड़ा। तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना। तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने। दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी। हसीना मान जाएगी। हसीना मान जाएगी। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे। छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे।

क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना।

नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए सब सुना।

अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू।

0: अंदर मत आना, मैं कपड़े बदल रही हूँ।
1: ओ माफ करना, भूल गया था। अच्छा तुम कपड़े बदल लो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ।
0: ए क्या हुआ?
1: हुआ ये मीनू, हमारे दरमियान ये साड़ी एक दीवार बन गई है।
0: पगला कहेगा, इसे दीवार कहता है।

0: कहीं दाग न लग जाए।
1: ठीक कहती हो, कहीं आग न लग जाए।

से करो मेरी जान गई, धीरे धीरे हौले हौले नशा ये पिलाया किसने, फिर ये चुपके चलाया किसने, ये मीठा मीठा

का जरूर आ गया अंग अंग भरा रंग गुल खिलाया किसने फिर ये चुप के चलाया किसने ये मीठा मीठा जादू जगाया।

है बोल जान मन मुस्कुरा के बोल दे तुम्हें थे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे ओ तनम मैं तेरा आशिक जावदा।